नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र। आज दिन है गुरुवार, सत्संगवत 1947, तारीख है साथ ही अंग्रेजी सन 2026, अगस्त महीने की आज 13 तारीख है। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए आरंभ करता हूं आज की पहली सभा।

0: श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राज मार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा।
2: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। उच्च न्यायालय ने सवाल उठाया कि परीक्षा को पहले क्यों नहीं रोका गया और क्या इसे दोबारा कराया जाना चाहिए। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
3: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: उधर झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जाँच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जाँच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। आवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की कथित ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले

0: जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव क्षेत्र में कथित हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त कार्रवाई समिति के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया कि लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शन जारी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम जानते हैं आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आरंभ करेंगे हम रोज की तरह भक्ति गीतों के साथ 6:10 पर। 6:30 पर आप सुन पाएंगे महिला केंद्रित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 7:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 7:05 पर हम पेश करेंगे आज का दिन।

विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 7:30 पर। 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। देशभक्ति गीतों का आनंद आप ले पाएंगे 8:15 पर। 8:30 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

श्रोताओं, हम दे रहे थे आपको जानकारी आज की पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। 8:40 पर आप सुनेंगे कानून और न्याय मंत्रालय के तहत न्याय विभाग का प्रायोजक कार्यक्रम का एपिसोड 7। 9:00 आप सुनेंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुअर आंचलिक बातोरी और 9:15 पर हम आरंभ करेंगे हमारे स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम को, जिसमें सबसे पहले आप सुन पाएंगे खेलमा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत, गायक कलाकार रहेंगे सोंगने साक्षे और उनके साथी। रांगखोल कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 9:25 पर। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे वेनबुम थोई बांखेंग और उनके साथियों की आवाज़ों में कुछ लोकगीत।

9:35 पर आप आनंद ले पाएंगे जयंतिया कार्यक्रम का, जिसके तहत आप सुनेंगे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे अंजन सादप और उनके साथी। बेटे कार्यक्रम का आनंद आप ले पाएंगे 9:45 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपके लिए लेके आए हैं कुछ आधुनिक गीत लालम फानी डांडनई और उनके साथियों की आवाज़ों में। सुबह के 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक आप आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। इसी के बीच आप सुनेंगे हिंदी समाचार। दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज़ और उसके तुरंत बाद यानी कि 2:15 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार। तत्पश्चात दोपहर 2:30 से लेकर शाम के 5 बजे तक आप पुनः आनंद ले पाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम का। इसी के बीच शाम के 4 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की हमारी पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आइए अब हम आरंभ करते हैं भक्ति गीतों का कार्यक्रम।

0: इन्हीं भजनों के साथ यहीं पे समाप्त होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं महिला केंद्रित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम और आनंद लेते हैं इन फिल्मी गीतों का।
1: Gets himself a wife, but a daughter is a daughter.

0: फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। स्वतंत्रता दिवस के फुल ड्रेस रिहर्सल के कारण दिल्ली यातायात पुलिस ने यातायात परामर्श जारी किया है। लाल किले के आसपास आज 10 बजे तक यातायात पर प्रतिबंध और डायवर्जन लागू रहेगा। इस दौरान सिर्फ लेबल वाले वाहनों को ही आवाजाही की अनुमति होगी। नेताजी सुभाष मार्ग, लुथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और आसपास की कई सड़कों पर यातायात प्रभावित रहेगा। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके लिए लोगों में व्यापक उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
2: पक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
1: भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पंजाब सरकार पर राज्य में फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक के बारे में जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। श्री पात्रा ने कहा कि बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की जुलाई की इस परीक्षा के परिणाम पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है। श्री पात्रा ने दावा किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां पंजाब सरकार के उस पुराने बयान के विपरीत हैं जिसमें पेपर लीक से इनकार किया गया था।
3: पंजाब की सरकार, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान जी ने बार बार टीवी के सामने कहा कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ था फार्मेसी के एग्जाम में, ये मात्र इरेगुलरिटी का विषय था। और आज जब कोर्ट ने पूरे इस विषय का संज्ञान लिया है तो जनता के सामने सच्चाई आई। एग्जाम को रोक दिया गया है, उसके रिजल्ट अभी नहीं निकलेंगे और विषय अगली हियरिंग तक जा रहे। ये दिखाता है कि चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी, इनके दोहरे मानदंड हैं।
1: झारखंड में कई दौर की वार्ता और विधानसभा घेराव के बावजूद सरकार और आंदोलनकारी विद्यार्थियों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। विद्यार्थी वर्ष 2024 की जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों की विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियां हो चुकी हैं। प्रदर्शनकारी सीआईडी जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं और सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है। कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि लगभग 100 लोगों की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया है कि पाकिस्तानी सेना और वायुसेना की बमबारी और गोलीबारी में कई नागरिक हताहत हुए और परिसंपत्ति का नुकसान हुआ। संगठन ने घायल नागरिकों को सुरक्षा बलों द्वारा हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। संगठन ने सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सा पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। विद्यार्थी डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल के माध्यम से results.digilocker.gov.in पर अपना

0: परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अब हम आरंभ करते हैं आज का दिन, लेकिन उससे पहले सुनते हैं पोएम ऑफ द डे में इस पोएम को, जिसे प्रस्तुत किया है सानिया ने।
2: गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सानिया फ्रॉम क्लास 11 स्टडिंग इन सेंट एग्नेस हायर सेकेंडरी स्कूल हाफलॉन्ग। टुडे आई विल रिसाइट अ पोएम। द टाइटल ऑफ द पोएम इज नथिंग गोल्ड कैन स्टे। नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड, हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड, हर अर्लीस्ट लीव्स अ फ्लावर बट ओनली सो एन आवर। द लीव सबसाइड्स टू लीव, सो इडन सैंग टू ग्रीफ, सो डाउन गोज डाउन टू डे, नथिंग गोल्ड कैन स्टे। थैंक यू।
1: अब पेश है आज का दिन।

श्रोताओं, आज 13 अगस्त है। आज का दिन पूर्वोत्तर भारत के गौरवशाली इतिहास से लेकर विश्व की कई बड़ी घटनाओं और मशहूर हस्तियों की यादों को समेटे हुए हैं। एक तरफ ये दिन हमें मणिपुर के महान स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान की याद दिलाता है, तो दूसरी तरफ विज्ञान, सिनेमा और खेल के मैदान में हासिल की गई कई बड़ी उपलब्धियों का भी ये गवा रहा है। इसके साथ ही कई दिग्गज कलाकारों के जन्म और महान समाज सुधारकों की विदाई के इस ऐतिहासिक सफर में चलिए पलटते हैं 13 अगस्त के पन्ने।

भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर के लिए 1891 का आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक और बलिदान का दिन था। आज ही के दिन ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए महान देशभक्त वीर टिकेंद्रजीत सिंह और थंगाल जनरल देश के लिए शहीद हुए थे। विज्ञान और इंजीनियरिंग की दुनिया में 1913 की ये 13 अगस्त एक बहुत बड़ी खोज लेकर आई थी, जब मशहूर इंग्लिश साइंटिस्ट हैरी बर्ली ने दुनिया में पहली बार स्टेनलेस स्टील का आविष्कार किया था। अफ्रीका महाद्वीप में 1960 को आज ही के दिन एक बड़ा बदलाव आया था, जब सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ने खुद को फ्रांस के शासन से पूरी तरह आज़ाद घोषित किया था। दुनिया की राजनीति को हिला देने वाली एक बहुत बड़ी घटना 1961 में आज ही के दिन घटी थी, जब ईस्ट जर्मनी ने रातों रात ऐतिहासिक बर्लिन वॉल का निर्माण शुरू किया था, जिसने देश को दो हिस्सों में बांट दिया। खेल के मैदान पर 1999 में आज ही के दिन एक मशहूर दौर का अंत हुआ था। दुनिया की महातनम टेनिस प्लेयर में शुमार स्टेफी ग्राफ ने अपने शानदार खेल करियर से संन्यास की घोषणा की थी।

अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत के लिए 2004 का आज का दिन एक जश्न लेकर आया था, जब सदियों बाद ओलंपिक खेल अपनी जन्मभूमि यानी यूनान की राजधानी एथेंस में वापस लौटे थे और उनका शानदार उद्घाटन हुआ था। तैराकी यानी स्विमिंग के इतिहास में 2008 का दिन सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। महान अमेरिकन स्विमर माइकल फेल्प्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ओलंपिक खेलों के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने का नया रिकॉर्ड बनाया था। गणित के क्षेत्र में महिलाओं के लिए 2014 का आज का दिन बहुत ही प्रेरणादायक था। शानदार साइंटिस्ट मरियम मिर्जा खानी गणित का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड फील्ड मेडल जीतने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। विश्व शांति की दिशा में 2020 को आज के दिन एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था, जब इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अपनी आपसी संबंधों को सुधारने के लिए मशहूर अब्राहम एकॉर्ड्स पर सहमति जताई थी।

श्रोताओ, आइए अब जानते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में शानदार खोज करने वाले महान स्वीडिश फिजिसिस्ट एंडर्स जोनास एंगस्ट्रॉम का जन्म 1814 में आज ही के दिन हुआ था। टेलीविजन का आविष्कार करके दुनिया के संचार का तरीका बदलने वाले महान स्कॉटिश इंजीनियर जॉन लोगी बेट का जन्म साल 1888 में आज ही के दिन हुआ। हॉलीवुड सिनेमा में सरपेंस फिल्मों के जादूगर जाने माने वाले महान इंग्लिश फिल्म डायरेक्टर अल्फ्रेड हिचकॉक का जन्म साल 1899 में आज ही के दिन हुआ।

विज्ञान की दुनिया में दो बार केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज जीतने वाले दिग्गज इंग्लिश बायोकेमिस्ट फ्रेडरिक सेंगर ने साल 1918 में आज ही के दिन दुनिया में कदम रखा था। क्यूबा की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे और मशहूर क्रांतिकारी नेता फिडेल कैस्ट्रो का जन्म साल 1926 में आज ही के दिन हुआ।

इंडियन सिनेमा के सुनहरे दौर की सबसे बेहतरीन और लोकप्रिय एक्ट्रेस विजया थिमला का जन्म साल 1936 में आज ही के दिन हुआ था। बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस योगिता बाली ने साल 1952 में आज ही के दिन यानी 13 अगस्त को जन्म लिया था।

फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर एक्टर सुनील शेट्टी का जन्म साल 1961 में आज ही के तारीख को हुआ था। अपनी खूबसूरती और लाजवाब एक्टिंग से करोड़ों दिल जीतने वाले इंडियन सिनेमा की महान एक्ट्रेस श्रीदेवी का जन्म साल 1963 में आज ही के दिन हुआ। क्रिकेट के मैदान पर अपनी तेज गेंदबाजी से बल्लेबाजों को पसीने छुड़ाने वाले शानदार पाकिस्तानी बॉलर शोएब अख्तर का जन्म साल 1975 में आज ही के दिन हुआ था।

श्रोताओं, अब आइए जानते हैं कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था। भारत के मराठा साम्राज्य की महान और बेहद न्यायप्रिय रानी अहिल्याबाई होलकर ने साल 1795 में आज ही के दिन अंतिम सांस ली थी। कला की दुनिया में अपनी खास पहचान बनाने वाले मशहूर फ्रेंच पेंटर यूजिन डेलाक्रोक्स का निधन साल 1863 में आज ही के दिन यानी 13 अगस्त को ही हुआ था। आधुनिक नर्सिंग सेवा की नींव रखने वाली और पूरी दुनिया में दया की मिसाल माने जाने वाली महान फ्लोरेंस नाइटिंगेल का निधन साल 1910 में आज ही के दिन हुआ। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विदेशी धरती पर पहली बार देश का झंडा फहराने वाली महान क्रांतिकारी भिकाजी कामा ने साल 1936 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। साइंस फिक्शन साहित्य के जनक माने जाने वाले मशहूर इंग्लिश राइटर एच जी वेल्स का निधन साल 1946 में आज ही के दिन हुआ। हॉलीवुड के मशहूर फिल्म डायरेक्टर चार्ल्स वॉल्टर्स ने साल 1982 में 13 अगस्त को ही अंतिम सांस ली थी।

साउथ एशिया में पॉप म्यूजिक की शुरुआत करने वाली बेहद मशहूर सिंगर नाजिया हसन का निधन साल 2000 में आज ही के दिन हुआ था। अमेरिका की जानी मानी लेखिका और मशहूर मैगजीन एडिटर हेलेन गर्ली ब्राउन ने साल 2012 में आज ही के दिन दुनिया को अलविदा कहा था। भारत की राजनीति के अहम चेहरे और लोकसभा के पूर्व स्पीकर सोमनाथ चटर्जी का निधन साल 2018 में आज ही के तारीख को हुआ था। अंतरिक्ष की गहराइयों में कई धूमकेतुओं को खोज करने वाली महान अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कैरोलिन शूमेकर का निधन साल 2021 में आज ही के दिन हुआ।

कार्यक्रम के अंत में आज मनाए जाने वाले एक बेहद खास दिवस के बारे में बात करते हैं। आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड ऑर्गेन डोनेशन डे यानी विश्व अंगदान दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन लोगों को मृत्यु के बाद अपने अंग दान करने के लिए प्रेरित करने और इस महान कार्य के प्रति जागरूकता फैलाने के समर्पित है। अंगदान से कई अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकती है और ये इंसानियत की सबसे बड़ी सेवा है। इसी के साथ हम यहीं पर समाप्त करते हैं आज का दिन। श्रोताओं, आशा है कि आपको आज का दिन कार्यक्रम होंगी। अब आइए जाते जाते सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: आपके गीत। दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर व्हाट्सएप के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर व्हाट्सएप करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
1: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम।

श्रोताओं, विज्ञान पर आधारित कार्यक्रम में आज हम विज्ञान की दुनिया से जुड़े एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज हमारे आसपास बहुत तेजी से दिखाई दे रहा है। ये ऐसा चीज है जिससे हम अपने मोबाइल में बात कर सकते हैं, हम इससे सवाल पूछ सकते हैं, ये हमारे लिए कुछ लिख सकता है, तस्वीर बना सकता है, हमारे आवाज़ को समझ सकता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदल सकता है और कई ऐसे काम कर सकता है जिनके लिए पहले हम किसी दूसरे इंसान की मदद लेने पड़ती थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एआई की। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सवाल ये है कि आखिर एआई है क्या? क्या ये कोई रोबोट है? क्या ये कोई इंसान जैसा दिमाग है? क्या एआई खुद से सोच सकता है? क्या एआई हमसे सीख सकता है? और सबसे ज़रूरी सवाल, जब हम एआई से कोई सवाल पूछते हैं तो उससे हमारे सवाल का जवाब पता कैसे चलता है? तो आइए शुरू करते हैं।

सबसे पहले समझते हैं कि एआई क्या है। बहुत आसान भाषा में कहे तो एआई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर या मशीन को कुछ ऐसे काम करने में मदद करती है जिनके लिए आमतौर पर इंसानी दिमाग की ज़रूरत पड़ती है।

जैसे किसी की आवाज़ पहचानना, किसी तस्वीर को पहचानना, भाषा को समझना, जानकारी में से ज़रूरी चीज़ ढूंढना, किसी सवाल का जवाब देना या किसी काम को करने का तरीका सुझाना। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, AI इंसान नहीं है। जब हम कहते हैं कि AI सीखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि AI हमारे जैसे बैठकर सोचता है, महसूस करता है या अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है। AI का काम करने का तरीका अलग है। AI बहुत सारी जानकारी और एग्जांपल्स से कुछ पैटर्न सीखता है। अब ये बात थोड़ी मुश्किल लग सकती है, इसलिए इसे एक आसान एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए हम एक छोटे बच्चों को कुत्ता और बिल्ली पहचानना सिखा रहे हैं। हम उसे कई तस्वीरें दिखाते हैं, हम कहते हैं ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, फिर एक और तस्वीर दिखाते हैं, फिर बताते हैं कि ये बिल्ली है। धीरे धीरे बच्चा दोनों में फ़र्क समझने लगता है। अब अगर बाद में वह कई नई बिल्लियां देखती है, तो वह पहचान सकता है कि ये बिल्ली है। AI में भी कुछ ऐसा ही होता है। AI को बहुत सारे एग्जांपल्स दिए जाते हैं, वह उन एग्जांपल्स से कुछ खास पैटर्न ढूंढता है। फिर जब उसके सामने कोई नई चीज़ आती है, तो वो पहले सीखी हुई जानकारी के आधार पर जवाब देने या पहचानने की कोशिश करता है।

इसी से जुड़ी एक बहुत जरूरी चीज है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का मतलब आसान भाषा में हम समझे कि कंप्यूटर को बहुत सारे एग्जांपल्स देकर उससे खुद पैटर्न्स पहचानना सिखाना। उदाहरण के लिए अगर हमें कंप्यूटर को बिल्ली की तस्वीर पहचानना सिखाना है तो हम उसे बहुत सारी बिल्ली की तस्वीरें दिखा सकते हैं। अलग अलग रंग की बिल्ली, अलग अलग जगह बैठी हुई बिल्ली, अलग अलग आकार की बिल्ली, फिर उसे कुत्तों की भी बहुत सारी तस्वीरें दिखाई जाती है। इसी तरह कंप्यूटर धीरे धीरे दोनों के बीच का फर्क सीखने की कोशिश करता है। फिर जब उसे कोई नई तस्वीर दिखाई जाती है तो वो अनुमान लगाता है कि तस्वीर में क्या है। यानी एआई को हर बार ये नहीं बताया जाता कि इस तस्वीर का जवाब क्या है, उसे एग्जांपल से सीखने का मौका दिया जाता है।

अब यहाँ एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है डेटा। डेटा यानी जानकारी। एआई के लिए डेटा बहुत जरूरी है। जितनी ज़्यादा अच्छी जानकारी एआई को मिलती है, उतना ही वह कुछ कामों में बेहतर हो सकता है। मान लीजिए हमें मौसम के बारे में जानकारी चाहिए। अगर हमारे पास पिछले कुछ सालों का तापमान, बारिश, हवा और दूसरी मौसम की जानकारी है, तो कंप्यूटर उस जानकारी को देख सकता है और उसमें कुछ पैटर्न्स ढूंढ सकता है। इसी तरह अगर किसी एआई को भाषा से जुड़े काम करने में, तो उसे बहुत सारी भाषा की जानकारी सीखना पड़ता है, उसे अलग अलग शब्दों को देखना पड़ता है, वाक्य देखना पड़ता है, सवाल और जवाब देखना पड़ता है। फिर वह ये समझने की कोशिश करता है कि शब्द एक दूसरे के साथ किस तरह इस्तेमाल होते हैं। ये वजह है कि आज हम एआई से सामान्य भाषा में बात कर सकते हैं, हम उससे पूछ सकते हैं, एआई हमारे शब्दों को देखकर हमारे जवाब तैयार करने की कोशिश करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एआई इंसान की तरह हर बात को महसूस कर सकता है। ये फर्क हमेशा याद रखना चाहिए। अब एक दिलचस्प सवाल आता है, क्या एआई सच में सोच सकता है? जब हम किसी एआई से बात करते हैं तो वो तुरंत जवाब देता है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई इंसान बैठा है। लेकिन एआई के काम करने का तरीका इंसान के दिमाग से अलग है। इंसान अपने अनुभव से सीखता है। हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं, हम चीज़ों को महसूस करते हैं, हम खुशी होते हैं, हम दुख होते हैं, हमें डर लगता है, हम अपने पुराने अनुभव को याद करते हैं। एआई के बारे में ऐसा मानना सही नहीं होगा कि वो इंसान की तरह इन चीज़ों को महसूस करता है। एआई बहुत बड़ी मात्रा में इंफॉर्मेशन को देख सकता है और उसके आधार पर जवाब दे सकता है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि एआई सोच रहा है, तो हमें समझना चाहिए कि वो कंप्यूटर के तरीके से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके जवाब दे रहा है।

श्रोताओं, एआई हमारे लिए एक बहुत काम की टेक्नोलॉजी और साइंस है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना हमारी जिम्मेदारी है। हमें इसके फायदे उठाने चाहिए, लेकिन इसके नुकसान और गलत इस्तेमाल से भी सावधान रहना चाहिए। एआई कितना भी आगे बढ़ जाए, इंसान की समझ और सही फैसला हमेशा जरूरी रहेगा। इसके साथ ही हम ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब जाते जाते आइए सुनते हैं कुछ फिल्मी गीत।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा।
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें। PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपरली के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए और बीसीसीआई ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 की समीक्षा के लिए उसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का अनुमोदन कर दिया है। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया।
2: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों और राज्यसभा के 10 सदस्यों से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए। समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।
1: नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के लोकसभा के प्रस्ताव का स्वागत किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित नियमों के अंतर्गत जारी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी ए और ओबीसी बी के सभी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए हैं। न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने यह कहा है कि राज्य में ओबीसी ए और ओबीसी बी वर्गीकरण प्रणाली अब अस्तित्व में नहीं है, इसीलिए उस प्रणाली के अंतर्गत जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं है। ऐसे प्रमाण पत्र धारक अब सामान्य वर्ग के माने जाएंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब में 454 फार्मेसी ऑफिसर की नियुक्ति प्रक्रिया पर 17 सितंबर को इस मामले की सुनवाई तक स्थगन लगा दिया है। न्यायमूर्ति संदीप मौदगिल ने केशव कंबोज और अन्य की याचिका पर स्थगन आदेश जारी किया। याचिका में दावा किया गया कि संगठित धोखाधड़ी रैकेट ने इस परीक्षा में अनियमितताएं की।
3: इस कथित पेपर लीक के कुछ ही घंटों के भीतर पंजाब पुलिस ने फरीदकोट, कोटकपुरा और फिरोजपुर के 25 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई करके एक अंतरराज्यीय चीटिंग रैकेट का भंडाफोड़ करने का दावा किया था। पुलिस ने 7 मुख्य साजिशकर्ताओं और 28 उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया था जो इस मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पंजाब सरकार ये कहती आ रही है कि यह घटना पारंपरिक पेपर लीक के बजाय हाईटेक चीटिंग से जुड़ी है। बीजेपी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल सहित विपक्षी पार्टियों ने आम आदमी पार्टी सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित पार्टी के नेतृत्व पर कथित पेपर लीक को मामूली चीटिंग का मामला बताने की कोशिश करने के लिए निशाना साधा है। विपक्षी पार्टी के नेता जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। बलूचिस्तान के सुराब जिले में कल पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए। बलूचिस्तान गणराज्य समूह ने दावा किया कि बमबारी और गोलीबारी में परिसंपत्ति को भी नुकसान हुआ।
4: समूह ने सुरक्षा बलों पर घायल नागरिकों को हिरासत में लेने तथा राहत और बचाव अभियान रोकने का आरोप लगाया। सैनिकों द्वारा अस्पतालों की घेराबंदी और चिकित्सकों पर दबाव डालने का आरोप लगाया गया है। कुछ घायलों की मौत उपचार न मिलने के कारण हुई। ड्रोन और कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर इलाके में गश्त करते दिखाई दिए। इलाके में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। बलूचिस्तान

0: गणराज्य ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस स्थिति का संज्ञान लेने तथा बलोच नागरिकों के जीवन और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया है। पिछले एक दशक में कबायली इलाकों में पाकिस्तान सेना के हवाई हमले और बमबारी में अनेक नागरिक मारे गए हैं। मानवाधिकार समूहों ने इन हमलों की कड़ी आलोचना की है। पाकिस्तान का अपने ही लोगों पर सैन्य बल इस्तेमाल का इतिहास रहा है। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ ओम प्रकाश ने पाकिस्तान के हालात पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की खामोशी पर सवाल उठाया है।
2: पाकिस्तान सुराब में वही कर रहा है जो वो दशकों से करता आ रहा है, बलोचों के साथ, पठानों के साथ, सिंधियों और कश्मीरियों के साथ। कितनी आश्चर्य की बात है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय, जो कि हर दूसरे देश में बोलता रहता है, पाकिस्तान पर आके चुप हो जाता है। एक अच्छी बात यह है कि अब बलोच, सिंधी, पठान, कश्मीरी सारे एथनिक ग्रुप्स अब मिलके आवाज उठाने लगे हैं, एक दूसरे के साथ ताल मिला के। ये निश्चित रूप में एक आशा का किरण है।
1: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में व्यापक विरोध प्रदर्शन का मुद्दा अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आना तय है। अवामी एक्शन कमेटी ने पूरी दुनिया में रह रहे कश्मीरियों से पाकिस्तानी सेना द्वारा सरकार प्रायोजित आतंक को बेनकाब करने के लिए आज विश्वव्यापी प्रदर्शन की अपील की है।
3: कमेटी ने लोगों से रैलियां आयोजित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तानी सेना की ज्यादती और हिंसा की ओर आकृष्ट करने का आग्रह किया है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थिति तनावपूर्ण है। प्रदर्शनकारी हाल के विवादास्पद चुनाव, क्षेत्र में हत्या, निर्दोष लोगों को जबरन अगवा किए जाने और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोके जाने पर सवाल उठा रहे हैं। कमेटी के वरिष्ठ नेता सरदार शब्बीर ने दावा किया है कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से विरोध प्रदर्शनों में लगभग 100 लोगों की हत्या कर दी गई है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: उत्तरी बंगाल की खाड़ी में हवा के कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आज उड़ीसा में तेज वर्षा होने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र आज और तेज होकर डिप्रेशन में बदल सकता है। इसके असर से उत्तरी ओडिशा, खासकर बालेश्वर, मयूरभंज और केंदुझर में लगातार भारी बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में बालेश्वर में लगभग 137 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भद्रक, अनुगुल, जाजपुर और ढेंकानाल जिलों में भी भारी बारिश हुई है। इस बीच कोरापुट जिले के नंदपुर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले डारे गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और सम्मान प्रदान करेंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित सम्मान समारोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संस्कृति राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह उपस्थित रहेंगे।
5: अकादमी पुरस्कार 1952 से प्रदान किए जा रहे हैं। ये सम्मान न केवल उत्कृष्टता और उपलब्धि के उच्चतम मानक का प्रतीक हैं, बल्कि कलाकारों के निरंतर व्यक्तिगत कार्य और योगदान को भी मान्यता देते हैं। अकादमी फेलो के सम्मान में 3,00,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है, जबकि अकादमी पुरस्कार में ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम के अतिरिक्त 1,00,000 रुपए की राशि दी जाती है। फेलोशिप के लिए चुने गए लोग और पुरस्कार विजेता भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है और पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आरजू के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: झारखंड में 14वीं JPSC परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन जारी है। परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का ये मुद्दा अब रांची की सड़कों से लेकर दिल्ली में संसद परिसर तक पहुँच गया है।
6: 14वीं JPSC परीक्षा में कथित विसंगतियों की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अभ्यर्थी पूरी तरह लामबंद हैं। इसी कड़ी में रांची में JPSC JSSC रिफॉर्म मंच की कोर कमेटी की एक अहम बैठक हुई। बैठक में आंदोलन की आगे की रणनीति पर गहन चर्चा की गई और छात्रों ने मांगे पूरी होने तक अपना प्रदर्शन जारी रखने का संकल्प दोहराया। उधर प्रदर्शनकारी छात्रों पर पिछले दिनों हुए लाठीचार्ज का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। भारतीय पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन कर झारखंड सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया और पूरे विवाद की CBI जांच कराने की मांग दोहराई। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम।
1: केरलम में आज 3 स्थानों पर सशस्त्र बल के बैंड संगीत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में ये संगीत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
7: नौसेना और वायुसेना आज तिरुवनंतपुरम, कणूर और कोची में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए बैंड का प्रदर्शन करेगी। इसमें तालमेल और अनुशासन के साथ देशभक्ति और लोकप्रिय गानों का प्रदर्शन होगा।

0: सेना का बैंड तिरुवनंतपुरम के निशा गांधी में, कोची सदर्न नेवल कमांड बैंड एर्नाकुलम के लुलु मॉल में और एजी माला नेवल एकेडमी बैंड कर्णूर के थाजे चोवा में प्रदर्शन करेगा। ये कार्यक्रम आज शाम 6 बजे शुरू होंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच नई दिल्ली में 13 से 17 सितंबर तक 3 T20 क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसकी पुष्टि की है।
2: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष मिथुन मनहास ने कहा कि बोर्ड अफगानिस्तान में क्रिकेट के विकास में सहयोग करने और अफगानी खिलाड़ियों को उच्चतम प्रतिस्पर्धा के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान ने इस वर्ष जून में भारत के साथ 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला खेली थी। दोनों टीमों ने जनवरी 2024 में 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला भी खेली थी। भारत ने 2018 में अफगानिस्तान के ऐतिहासिक पहले क्रिकेट टेस्ट मैच की मेजबानी की थी और तब से दोनों टीमें विभिन्न प्रारूपों में नियमित रूप से परस्पर मैच खेलती रही हैं। समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद फरहत। संसद के मानसून सत्र में छात्रों के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के शब्द सभी अखबारों ने प्रकाशित किए हैं। अमर उजाला लिखता है, संसद में हर मुद्दे पर जवाब दूंगा, विपक्ष बहस शुरू करे। पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ आरोप साबित, संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सके। लोकसभा जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा, जलते नोट सुलगते सवाल, जनसत्ता सहित कई अखबारों की सुर्खी है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को दी गई सीख प्रकाशित की है, रील के दौर में युवा शॉर्टकट नहीं मेहनत का रास्ता चुने। प्रधानमंत्री ने कहा, रेलवे स्टेशन पर लिखी बात अवश्य याद रखें, शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। कर्नाटक में गुटखा पान मसाला बनाने बेचने और रखने पर रोक, स्वास्थ्य के लिए सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान पत्रिका की खबर है। पत्र लिखता है, भारत में तंबाकू जनित बीमारियों से हर वर्ष करीब 13 लाख से अधिक मौतें होती हैं। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर शिक्षा से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें स्कूली पढ़ाई, चित्रों और शब्दों को मिलाकर अपनी कहानी गढ़ने समझने जैसी प्रक्रिया अपनाई जाए तो ये खेल खेल में सीखने जैसी प्रक्रिया होगी। दैनिक जागरण ने CBSE द्वारा पूरक परीक्षा के परिणाम जारी करने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, CBSE 12वीं की पूरक परीक्षा का परिणाम जारी, 53.8% विद्यार्थी हुए पास। डिजी लॉकर और CBSE की वेबसाइट पर देख सकते हैं परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए बच्चों को घर से निकालने का आदेश सही बताया। कहा, बुजुर्गों को मिलने वाले सम्मान से ही सभ्य समाज की होती है पहचान। पीठ ने कहा, अनुभवों का खजाना होते हैं बुजुर्ग, अमर उजाला की खबर है। आज विश्व अंगदान दिवस पर नवभारत टाइम्स ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, देश में अंगदान की कमी बनी चुनौती, भारत में मृतक अंगदान की दर प्रति 10 लाख की आबादी पर 1 से कम। पत्र ने एक और सुर्खी दी है, ट्रांसप्लांट के बाद दवाएं मुफ्त देने की संसदीय समिति की सिफारिश, साल भर में जितने किडनी ट्रांसप्लांट उससे 5 गुना मरीज अब भी कतार में।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा संशोधित विनियमों के तहत जारी सभी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र रद्द किए। उच्च न्यायालय ने संगठित पेपर लीक के आरोप में पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम हवा के दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में आज तेज वर्षा की चेतावनी। बलूचिस्तान के सूरत जिले में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 से अधिक नागरिक मारे गए। और BCCI ने सितंबर में भारत और अफगानिस्तान के बीच T20 क्रिकेट श्रृंखला की पुष्टि की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब हम आनंद लेते हैं देशभक्ति गीतों का।

इसी गीत के साथ यही पे समाप्त होता है देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज़।

0: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज।
1: हेलो हफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हफलोंग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हफलोंग।
0: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हफलोंग केंद्र। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का प्रायोजित कार्यक्रम, जिसका एपिसोड नंबर 7।
2: We bring you a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. This talk was part of a webinar organized by the Department of Justice.
3: जब तक एक इंडिविजुअल ये नहीं समझता कि मुझे मेंटल हेल्थ की इश्यूज हैं, मुझे हॉस्पिटल जाना है या मुझे किसी से कनेक्ट करना है, तब तक नेक्स्ट स्टेप आता ही नहीं है। We do not then talk about what rights he has or what where he can go. जब भी हम अक्सर स्वास्थ्य की बात करते हैं, फिजिकल हेल्थ, whether he is healthy or not, शारीरिक रूप से हम स्वस्थ हैं कि नहीं, एंड वी यूजुअली इग्नोर the mental health aspect and the social. So WHO has identified that mental health is integral to health. So when we are talking about mental health, what is mental health? It's a complex process. क्या हम समझ पा रहे हैं मेरे साथ जिंदगी में क्या हो रहा है, लाइफ में कितने सारे पड़ाव पड़ते हैं, are we able to cope up with those things, are we productive despite having to face various challenges in life. So if we are able to do so, we would say that I'm mentally healthy, I'm able to deal with my mental health adequately. There are various situations in life, whether it is at workplace, family, with how we are connecting with other individuals, whether we are facing some legal battle or we are having shortage of funds, someone in the family is ill, or home environment or the school environment or the workplace is having problems. So in sab cheezon ko leke hum some individuals may feel stressful, some individuals may feel that this is part of life. To hamare reactions alag alag hote hain, and at the same time we need to understand that some amount of stress is important to drive us to face those challenges. Agar hamare paas ek bacche ke samne exam ho hi nahi to wo padega hi kyun? तो एग्ज़ाम एक तरह से उसके लिए स्ट्रेस भी क्रिएट करता है, पर दूसरे पर्सपेक्टिव से उसको एक चैलेंज भी मिलता है कि मुझे आगे सीखना है। बट एट द सेम टाइम आफ्टर सर्टन अमाउंट ऑफ स्ट्रेस वी बिकम डिसफंक्शनल, जिसको हम कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए एंग्जाइटी देता है, घबराहट देता है, एक helplessness ki feeling deta hai. That is the time when we need to seek help. If we are able to face the stress adequately, we are fine. But if we are not able to face the coping, we are not able to face those challenges, then we start having headache ho raha hai, mujhe bahut thakan lagti hai, mere ko neend nahi aa rahi hai. So these are some of the signs and commonly reported symptoms, whether they are in the form of physical issues, kyunki aksar hum mental health issues ko bhi physical ka naam dete hain. Hame mehsoos yahi hota hai ki hamare sharir mein

0: हम शारीरिक कंप्लेंट्स देते हैं, मेरे हेडेक हो रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा नहाने का, मेरा को नींद ठीक से नहीं आती, या मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगती है, या मेरा मन नहीं करता है खाना खाने को. सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल सोमेटिक कंप्लेंट्स दैट इफ वन इज फीलिंग दैट और वन इज रिपोर्टिंग, वी नीड टू टेक इट सीरियसली. सम ऑफ द बिहेवियरल साइंस इंक्लूड, देर इज अ सडन, पेरेंट्स आके कहते हैं कि कई बार पता नहीं बिना प्रोवोकेशन के, बिना कोई किसी कॉन्टेक्स्ट के इरिटेबल हो जाता है, वापस जवाब देता है, या अननेसेसरली शॉपिंग आजकल हो रही है, एक्सट्रीम्स ऑफ बिहेवियर विच वॉज नॉट देयर अर्लियर. सो एनी चेंज ओवर द टाइम विच इज नॉट देयर, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय द फैमिली, दैट मीन्स देयर इज सम दिस बिहेवियर नीड्स टू बी अटेंडेड टू. एट अ सोशल लेवल वी डोंट वॉन्ट टू इंटरैक्ट विद पीपल, वी डोंट वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड टू पीपल, रिस्पॉन्ड टू फैमिली मेम्बर्स. छोटी छोटी चीज़ों को लेके हम नर्वस हो जाते हैं. समटाइम्स वी से दैट मुझे लग रहा है कि बस जिंदगी का अंत आ गया है. सो दीज काइंड ऑफ इमोशनल रिस्पॉन्सेज ऑल्सो आर अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड मे बी एन इंडिकेशन फॉर मेंटल इलनेस. सो मोटे तौर से अगर हम देखें तो कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो इररिस्पेक्टिव, दे कैन बी, दीज साइंस कैन बी ड्यू टू सम फिजिकल इलनेस एंड दीज कैन ऑल्सो बी साइन फॉर सम मेंटल इलनेस. हमारे रोज के रोजमर्रा का जो रूटीन है उसमें चेंजेस आ रहे हैं. बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है, कॉलेज जाने में छुट्टी अक्सर आ रही है, हम वर्क प्लेस से कोई ना कोई बहाना लेके जल्दी वापस आ जाते हैं, वी आर नॉट ईटिंग वेल, आई गेट अप इन बिटवीन एट नाइट, और देयर इज अ चेंज इन माई इंटरेक्टिव. पहले बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन होती थी, अभी मैं, मेरा मन नहीं करता है. सो दीज आर ग्रॉस साइंस विच मे बी ड्यू टू एनी रीजन, but they are important to be picked. Some signs are specific to a particular disorder. ये सब common बीमारी है, बहुत ज़्यादा checking होती है, बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत गंदा हूँ तो बार बार नहाते हैं, या बहुत ज़्यादा hand washing होती है, तो OCD, obsessive compulsive disorder. बच्चों में अक्सर स्कूल से रेफरल आते हैं कि बच्चे में बहुत ज़्यादा, वो 7th क्लास में पढ़ रहा है पर उसको अभी तक सेंटेंस बनाना नहीं आता, उसकी स्पेलिंग में एरर्स बहुत हैं, या मैथ्स में वो 2nd क्लास का परफॉर्मेंस है. स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, तारे ज़मीन पर हम सब ने देखी है, एंड दैट इज़ वन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वॉट दिस इज अबाउट. मैनी टाइम्स अनलाइक अदर इलनेसेस पीपल डू रिपोर्ट, मेरे को बहुत डिप्रेशन रहता है. It should be taken seriously. It's a cry for help that I am not feeling well. अक्सर देखा गया है कि individuals who do try to commit suicide, they do say, they verbalize their problems, their helplessness, and they seek help, which we most often in our peer groups we do not recognize. Later on, अरे उसने तो ऐसा कहा था. Sometimes individual report मुझे कुछ सुनाई देता है, हम हंस के उड़ा देते हैं बात को. These may be signs for psychosis. Sometimes we say that बहुत anxiety, बहुत घबराहट हो रही है, तो मुझे लगता है कुछ मिनट को लगा कि मेरा तो अंत आ गया. It may be a panic attack. So we need to seek help rather than face that मेरा लोग मजाक उड़ाएंगे तो मैं नहीं जाता हूँ दिखाने. At times if it is possible, तो teachers setting में या parents जो educated हैं, we have small self-administered questionnaire which can actually tell you कि ये इस 10 items में से इतना cut off 2 के ऊपर है, that means you need to consult a mental health professional. PHQ, GAD, 7 items, 9 items, it's hardly anything. Very simple items which can be used in community.
1: You had been listening to a talk on mental health and access to justice, care and human dignity. We slip into a short break.

0: टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: वी कंटिन्यू विद द टॉक ऑन मेंटल हेल्थ एंड एक्सेस टू जस्टिस, केयर एंड ह्यूमन डिग्निटी बाय डॉक्टर रचना भार्गवा, प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी, एम्स दिल्ली।
2: ऐसा नहीं है कि एडल्ट

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कानून और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग का प्रायोजित कार्यक्रम का एपिसोड नंबर 7। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पूर्व आंचलिक बातोरी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से पुअर आंचलिक बातोरी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। आइए अब हम आरंभ करते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रम और आनंद लेते हैं खेलमा कार्यक्रम का, जिसके अंतर्गत हम सुनेंगे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे सोंगने साक्चेप और उनके साथी।

इन्हीं गीतों के साथ यही पे समाप्त होता है खेलमा गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे सोंगने साकचेप और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओ, आइए अब हम आनंद लेते हैं रांगखोल कार्यक्रम का और सुनते हैं कुछ लोकगीत। गायक कलाकार रहेंगे वेनबोम थोई बांगखेंग और उनके साथी।

आप आनंद ले रहे थे कुछ रांखो लोक गीतों का, जिसके गायक कलाकार थे वेनबुम थोई बांखेंग और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं जयंतिया कार्यक्रम और आनंद लेते हैं कुछ भक्ति गीतों का, अंजन शादप और उनके साथियों के आवाजों में।

इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है जयंतिया गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे अंजन शादप और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आनंद लेते हैं बेते कार्यक्रम का और सुनते हैं कुछ आधुनिक गीत लालम फानी डांडनई और उनके साथियों के आवाजों में।

0: इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है बेटे गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ आधुनिक गीत। गायक कलाकार थे लालम फानी डांडनई और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। श्रोताओं, आइए अब हम आनंद लेते हैं विविध भारती के कार्यक्रम का, जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।
1: आज के मेहमान।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं 9वीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था, क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सयानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा, क्योंकि जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए। इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन आदमी काम का। लेकिन वो 6 महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो 6 महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने 6 महीने से उंगलियों पे गिने हो, 6 महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि 6 महीने ऐसे नहीं होता है, 6 महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने 6 महीने डेट टू डेट लगा के
2: और दिन बढ़ गए इसके बाद।
1: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो 6 महीना अगर काउंट करेंगे तो वो 7 महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन 6 महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी 6 महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो का मिला, और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
2: करेक्ट,
1: हाँ चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की। तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
2: तो यहां से रेडियो शुरू हो गया
1: जी,
2: है ना? और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई?
1: रेडियो से रेडियो,
2: रेडियो से रेडियो।
1: हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहां की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहां कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहां से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो।
2: बिल्कुल।
1: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला की CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद मैं उनके साथ बराबर

0: टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है और
1: बिल्कुल, एक
0: हर
1: मई
0: एक
1: को
0: मई
1: होता
0: की
1: है,
0: एक मई में उनको कॉल किया
1: क्या
0: करता
1: बात है, मैं भी
0: था। तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन में। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया और जो फोन कटा मैंने देखा, मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है मेरे ख्याल से सबका ही होगा। जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं तो तू प्यार का सागर है,
1: सीमा
0: सीमा,
1: फिल्म का
0: शंकर जय
1: गाना,
0: किशन,
1: हाँ बिल्कुल जरूर,
0: शैलेंद्र
1: हाँ सुनते हैं ये गाना।
0: जी।

ये सब एडवेंचर चल रहे थे। इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बम्बई आ जाना चाहिए। बम्बई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के

0: उफ चला करते थे, फुल्ली फालतू।
1: बिल्कुल।
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था। मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री करवर के कुछ एक
1: बना रहे
0: दस
1: थे।
0: बारह मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा। मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहाँ आया। यहाँ आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो मैं यहाँ आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बम्बई में। अब विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया। वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस जमाने।
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं यहाँ। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा। किकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, दो तीन चार बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बम्बई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया। और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ, तो रेडियो में फिर बहुत सारी मजेदार चीजें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीजें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा, और मेरा पेट भर गया उस चीज से 4-5 महीने में। मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा नहीं
1: मतलब
0: आएगा।
1: है?
0: हाँ, ये वही वही सर्कल वाली बात होगी ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था, और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था वेंकटेश ने,
1: हाँ,
0: वो
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर।
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया, तो सैंडविच खाते हैं चल। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहता है? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी, उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं, लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे
0: नौकरी कर रहे हैं हम
1: हैं।
0: लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे, बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं, तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक दो तीन एपिसोड दिए, उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में, और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस। मैंने कहा ये प्रोमो हो गया।

0: इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए। और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।

0: और जावेद जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में है। तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया। वहाँ बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी।
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में। हाँ उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
0: वाह
1: ये
0: वाह।
1: नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस, वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज है, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में, मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड
0: वाह वाह वाह।
1: मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जद्दोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
0: बिल्कुल।
1: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था, तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया। कि तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विथ अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे

0: आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे, प्रॉपर वही शो की बात हो रही है।
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के दो शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये दो मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था, और
1: राइट।
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें? तो फिर तो मैं लालची हूँ, मैं सब करना चाहता था। मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा, और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हाँ, उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के
1: राइट
0: फुटेज
1: राइट।
0: लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है? तो मैंने, मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे दो तीन बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको।
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर, मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बचे थे इंडिया में, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं, तो हमने ऐसे काउंट डाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते हैं काउंट डाउन ग्राफिक्स में।
1: अच्छा
0: तो
1: रहा ये
0: हाँ
1: पंच।
0: हाँ हाँ तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे, और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, वो जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था उनमें। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो सुमराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे, कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, सुमराई कला बोलते हैं उसको। तो मैंने कहा
1: बिल्कुल।
0: सुमराई कला कैसे सीखें, रैपिड एक सुमराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे
1: लर्निंग
0: एड।
1: कोर्स।
0: हाँ, तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताया कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे, तो एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड शुरू
1: असली
0: होंगे।
1: ऐड आएगा।
0: हाँ, तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो वो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने थे।
0: इन आउट इन आउट, तो 200 एड्स हमने बनाए। तो वहां से उस शो की शुरुआत हुई। फिर वो शो मैंने लिखा भी, को डायरेक्ट भी किया, एडिट भी किया, उसके साथ ग्राफिक्स भी किए, उसमें एनिमेशन भी किया, वीएफएक्स भी किया, मतलब उस शो में शायद ही सेट में झाड़ू भी लगाई है। तो उस शो में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मेरा हाथ नहीं लगा हो। और वो करते करते एक मतलब जावेद भाई के लिए मन में एक बहुत रेस्पेक्ट तो है ही, लेकिन वो एक रेस्पेक्ट के साथ साथ ना प्यार भी बहुत बढ़ा, क्योंकि
1: बिल्कुल।
0: उनको बतौर इंसान जाने का मौका मिला। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि वो भी, मुझे लगता है कि मुझसे उतना ही प्यार करते हैं, छोटे भाई के जैसा मुझे हमेशा वो ट्रीट करते हैं। मेरे एक कॉल पे वो मेरे लिए कहीं भी खड़े हो जाते हैं आके। तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना, वो
1: बिल्कुल।
0: शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूँ और उस सेट पे ज्यादा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। हाँ, मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीजों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और
1: वो
0: कानूनी दांव
1: लूज
0: पे
1: एंड
0: वो
1: छूट जाते हैं जो
0: लूज
1: बात।
0: एंड

0: में
1: ऐसे
0: बहुत
1: ऐसे
0: भारी पड़
1: छूटते
0: जाते
1: हैं
0: हैं।
1: जो बाद में आप ना, मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें,
0: बिल्कुल।
1: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया, तो दो शोज हमने किए। उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसपे मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य है जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं,
0: बिल्कुल
1: वो आते हैं और जाते हैं।
0: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक, और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है, तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
1: उनका पहला गाना
0: मेरी जंग का।
1: मेरी जंग का, मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंग के पहले।
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल,
1: बोल बेबी बोल
0: वो सुनते हैं।
1: जी।
0: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स। आई हैव टेकन द चांस टू मेक यू डांस। यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव द बीट। सो देन व्हिच बीट वुड यू लाइक? दोस्तों, कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
2: नो।
0: सांबा?
2: नो।
0: रॉम्बा?
2: नो।
0: Samba,
2: no.
0: Tequila,
2: no.
0: Tango,
2: no.
0: Charleston,
2: no.
0: Polka,
2: no.
0: No?
2: No.
0: So phir kya ho? One, two, one, two, three, four, one, two, three, four, five, six, seven, eight, rock and roll. Hey, bol baby bol. बोल बोल बोल मेरे संग टोल, अरे दुनिया है गोल। अरे बोल बेबी बोल, बोल बोल बेबी बोल, जरा मेरे संग टोल, देख दुनिया है गोल। दिल में जाने दे मुझको, दिल के सब दरवाजे खोल।

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल
1: जी
0: रही थीं और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था, और कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है, और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है,
0: वाह
1: तो वो
0: वाह।
1: मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो,
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए, और जो चीज मुझे वहां से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना।
0: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है।
1: बहुत ज्यादा वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम
0: गजब।
1: लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे, वो 6:01 पे कभी नहीं आए
0: बिल्कुल।
1: इतने महीनों में। दूसरी चीज है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं, तो मुझे 10वां टेक तक मिला है।

0: उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, सिक्स्थ टेक, सेकंड टेक, फर्स्ट टेक।
1: वाह
0: जब डबिंग खत्म हुई उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे।
1: गजब।
0: तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
1: वाह वाह वाह वाह। वरना हम
0: सब
1: अपने
0: सब सब
1: सुनने वालों
0: रोमन,
1: को
0: सब
1: बता
0: रोमन
1: देंगे
0: में
1: सब
0: पढ़ते
1: लोग
0: हैं,
1: रोमन
0: सब
1: में
0: रोमन में
1: मानते हैं।
0: पढ़ते हैं।
1: जी
0: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो
1: क्या
0: वो
1: बढ़िया
0: एक
1: बात
0: बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूँ या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूंगी मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब 1000 बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो वन ऑन वन पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने, अस्सा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पे हमें रिस्पांस मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया, मतलब बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक
1: बनी
0: उत्साह बना
1: रहेगी।
0: रहेगा माहिष्मति के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे, वो डॉट 11 बजे आए। उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट की थी।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और वो पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। तो उन्होंने अपने
1: वाह
0: फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्रकथा है, उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजा मौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: जर्नी
1: हो
0: में कहीं
1: जाती
0: कहीं
1: हैं।
0: काम आती हैं। तो
1: बिल्कुल
0: ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही है, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया, पहला सीजन मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीजें हुई, एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजामौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो,
1: बिल्कुल।
0: शोले कर ली थी तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं
1: मतलब नहीं
0: बनता
1: था।
0: था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में

0: अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ रहे
1: ज्यादा
0: हैं,
1: हो
0: बहुत
1: रहा
0: सारी
1: है।
0: चीजें आ गई हैं। उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था, और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला। और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि, और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: इस सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है।
0: हाँ,
1: इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, अनलिमिटेड शो है, 5 एपिसोड का वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी अभी खत्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है, वन नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बन के रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं।
0: मुकद्दर का सिकंदर,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: टाइटल ट्रैक, कल्याण जी
1: बोलिए
0: आनंद जी, इंदीवर।
1: क्या बात है, क्या बात है। ये गाना सुनते हैं।

0: आलोक, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है, ये एक साइकिल है, चक्र है। तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं, हम भी उनमें से एक हैं, हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है। तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल, तो वो कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे, है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो ये अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब दो चीजें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं,
0: बिल्कुल
1: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
0: बनते
1: चाचा
0: बनते
1: चौधरी
0: रह
1: पे
0: जाती
1: शोभा।
0: हैं,
1: हाँ,
0: मतलब कई बार
1: डोगा
0: अनाउंस
1: डोगा
0: होता है।
1: डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म, एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है। हाँ, तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है। लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीजें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी। मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
0: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
1: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है। मुझे लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की जरूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है। बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का
0: दौर
1: जो
0: है
1: दौर है।
0: बिल्कुल। हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
1: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूं कि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है। मैं यहाँ
0: बिल्कुल
1: आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है।

0: तो मेरे लिए घर वापसी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, और क्या कहूँ मैं,
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया, फिर मिलते हैं
0: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: आज के मेहमान।

0: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर।
1: वंदे मातरम सुजला।
0: हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
1: शस्य श्यामलां मातरम वंदे मातरम।
0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष। प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: मेहंदी हसन साहब का यहाँ पे एक दौर आया था तो हमने बोला क्यों नहीं इसको हम कैश करें।
0: लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की जोड़ी के प्यारे लाल।
2: तो देखिए उसका अंतरा है दरा दरा दरा दरा। अब ये क्या उल्टी ही हरकत है। हम लोग जो गाते हैं दरा तारा दरा तारा, लेकिन मेहंदी हसन साहब की खास उठंग था तो हमने वो चीज ऐसे उठा के रख दिया कि लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा और लोगों ने खाक कर रहा।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका

विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर की आवाज में मीराबाई का ये भजन आपने सुना, गांधी फेवरेट्स भजन्स बाय लता मंगेशकर। ये इस एल्बम से हमने आपको सुनवाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।

0: मुर्तजा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कादर गुलाम मुस्तफा और मुर्तजा गुलाम मुस्तफा की आवाजें, शौकत अली ने इसे लिखा, A.R. रहमान का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल। नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है।

0: सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहा से हुजूर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: संगीत और आवाजें लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की। और इससे ठीक पहले आपने टुगेदर इस एल्बम से जगजीत सिंह को सुना, कैफ भोपाली के कलाम के साथ, और संगीत उन्हीं का था।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में निधा फाजली का कलाम। खयाम ने इसे संगीत से सजाया और ये है एल्बम आशा और खयाम से, हमने इसे लिया है।

0: सितम। इस एल्बम से चंदन दास की आवाज में ये गजल आप सुन रहे थे जिसे लिखा बशीर बद्र ने।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम्।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग।

लकी अली को आप सुन रहे थे उन्हीं के संगीतबद्ध किए इस गीत में, जिसे लिखा असलम ने, और इस गीत को हमने लिया एल्बम सुनो। इस एल्बम से ये गीत आप सुन रहे थे और रंग तरंग में अब आप सुनने वाले हैं सुनो तो दीवाना दिल। इस एल्बम से गीत कमाल खान की आवाज, वीके मेहता के बोल और कमाल खान का संगीत।

सरफरोश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज में, निदा फाजली ने से लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि है मैं हूं ना फिल्म से। सोनू निगम और आफताब साबरी और हाशिम साबरी की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, अनु मलिक का संगीत।

0: आप सुन रहे हैं
1: आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले रहे थे श्रोताओं, या आकाशवाणी का ये हाफलाहूं केंद्र है। अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा में खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने हेतु तो विधेयक प्रस्तुत किया। इस विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिनों में लोकसभा की 19 बैठकें हुई। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। इस दौरान लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, अधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधि संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्रवाई में बार बार बाधा आई। भारतीय जनता पार्टी ने आज विपक्षी दलों पर पंजाब और झारखंड के छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
3: भारत की संसद जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहां निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
2: मिजोरम के प्रभावशाली छात्र संगठन मिजो जिरलाई पावल MZP ने मिजोरम लोक सेवा आयोग में सुधारों की मांग को लेकर चल रहे अपने आंदोलन को समाप्त कर दिया है। संगठन के नेता ने बताया कि सरकार द्वारा आयोग में सुधार के लिए एक समिति गठित किए जाने के बाद ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया। संगठन ने 6 अगस्त को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के साथ अपना आंदोलन शुरू किया।

0: था। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण ने सरसों के आनुवंशिक संसाधनों से जुड़ी लाभ व्यवस्था के तहत 15 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की है। ये राशि 26 राज्य जैव विविधता बोर्डों और 3 केंद्र शासित प्रदेश जैव विविधता परिषदों को दी जाएगी। ये वितरण जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
1: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
0: लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलो न्यांती 2 दिन की यात्रा पर आज सुबह नई दिल्ली पहुंची। आज वे हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह दौरा भारत और लाइबेरिया के बीच सौहार्दपूर्ण और घनिष्ठ संबंधों को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करता है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 124 अंक गिरकर 77,843 जबकि निफ्टी 78 अंक घटकर 24,358 पर था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रैंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। उधर महिला सिंगल्स में कोको गोफ और ईगा स्वियातेक ने फाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे हिंदी में समाचार। ये आकाशवाणी का हफलॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं अब आइए सुनते हैं हम पुनः विविध भारती के कार्यक्रम। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे थे आनंद बख्शी के बोल शिव हरी का संगीत चांदनी फिल्म के इस गीत में। आज है अभिनेत्री श्रीदेवी का जन्मदिन और यादों के महफिल कार्यक्रम में आज उन्हीं की फिल्मों के गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। सुनते हैं खुदा गवाह फिल्म से ये गीत।

खुदा गवाह फिल्म का ये गीत आपने सुना अलका याग्निक और मोहम्मद अजीज की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी के फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: लम्हे फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और इला अरुण की आवाजें, आनंद बख्शी की बोल। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां से हुजूर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिनमें आज आपको सुनवा रहे हैं अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत, क्योंकि आज है उनका जन्मदिन।

0: चालबाज फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज।
1: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
2: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
1: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
2: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी। तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
2: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
1: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
2: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

गुलजार के शब्द आप सुन रहे थे येसुदास की आवाज में। इलैयाराजा का संगीत सदमा फिल्म के इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, जिसमें आज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें आज श्रीदेवी अभिनीत फिल्मों से गीत।

लता मंगेशकर की आवाज में नागिन, माफ कीजिएगा, नगीना फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल। आइए सुनते हैं मिस्टर इंडिया फिल्म से ये गीत, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया,
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
0: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम।
2: विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से आप सुन रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे आज राज्यसभा ने मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी की जाएगी। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए मॉनसून सत्र के दौरान 25 दिन में लोकसभा की 19 बैठकें हुईं। सदन में कई विधायी और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं हुई। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक, प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं को लेकर कार्यवाही में बार बार बाधा आई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद में बार बार व्यवधान डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है और उन पर लोकतांत्रिक तथा संसदीय परंपराओं का अनादर करने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में आकाशवाणी से बात करते हुए सुश्री पटेल ने कहा कि विपक्ष का यह व्यवहार पूरे देश ने देखा है।
4: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी। इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है, हंगामा करना है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 115 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति इस समय उपस्थित लोगों को संबोधित कर रही हैं। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति का संबोधन।
5: इन कलाओं में समुदाय की स्मृति और सामूहिक चेतना सहज रूप से व्यक्त होती है। यही कारण है कि लोक कला भारत की संस्कृति की पहचान का अत्यंत महत्वपूर्ण आधार है। मैं स्वयं ऐसे परिवेश से आती हूँ जहाँ बहुत से गीत ऐसे होते हैं जो लिखे नहीं जाते, केवल गाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी कथाएं होती है जो पुस्तकों में नहीं मिलेंगे, ये लोगों की स्मृति में ही रहती है। बहुत से नृत्य किसी मंच पर नहीं जन्म लेते हैं, ये उत्सवों और आम जीवन के बीच जन्म लेते हैं। देवी और स्वजनों, भारतीय संस्कृति के अनेक गंभीर

0: उद्यता ने कला की व्यापक परिधि की बात की है। संगीत और चित्रकला से लेकर बुनाई, पाक कला, अश्वकला तक अनेक दक्षता को कला के व्यापक संस्कार में स्थान मिला है।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
2: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 45 अंक गिरकर 77,922 पर, जबकि निफ्टी 59 अंक की गिरावट के साथ 24,377 पर कारोबार कर रहा था। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रेंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टीएन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार, रिले किए गए थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए पुनः आपको हम सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में आप सुन रहे थे सरगम फिल्म का ये गीत, और आपने बिल्कुल सही जवाब हमें दिया। फिल्म का नाम ही हमने आपसे पूछा था। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जब मनुष्य मानसिक तनाव और शोर से घिरा है, तब प्रकृति की ये संगीतमयता एक औषधि की तरह काम करती है। कुछ क्षण प्रकृति की गोद में बिताकर उसके इस मूक संगीत को सुनना हमारे भीतर नई ऊर्जा का संचार करता है। आज प्रकृति को निहारने भी ये कहीं गए हुए हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये इबारत प्रकृति को केवल देखने नहीं बल्कि उसे सुनने महसूस करने का निमंत्रण देती है। प्रकृति जब गुनगुनाती है तो उसके हाथ में कोई वाद्य नहीं होता, फिर भी उसकी हर आहट में संगीत जन्म लेता है। हवा की सरसराहट, बादलों की थाप, बारिश की बूंदों की रुंझुन और दूर बैठी कोई चिड़िया कोमल स्वर में उस अनदेखे गीत

की एक पंक्ति गुनगुना देती है और मन जाने कब उस अनसुनी धुन का हिस्सा बन जाता है। शायद सुकून भी यही है, जब बाहर प्रकृति अपना संगीत बजाती रहे और भीतर कोई खामोश सुर देर तक मुस्कुराता रहे। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि आज का कार्यक्रम संगीतमय होने वाला है। हम देखते हैं हमारे आजू बाजू चारों ओर संगीत बसा है, शहरों के चकाचौंध में, वाहनों में, रेलगाड़ी में, लोगों की बातों में, यहाँ तक कि शोर में भी संगीत बसा है। संगीत हर चीज में विद्यमान है। अगर जंगल, पहाड़ों और शांत जगह की कल्पना करें तो फिर क्या कहने। हरियाली, पहाड़, नदी, पगडंडी सभी अपनी लय में है और संगीत का निर्माण कर रहे हैं। देखा जाए तो ये दुनिया ही एक संगीत है, बस उसके साथ हमें एकाकार होना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात आपने कही। वहीं मेरे एक साथी ने कहा कि सभी जगह का तो नहीं, लेकिन पहाड़ों पर जाने पर, खासकर दार्जिलिंग सिक्किम के पहाड़ों से पतली पतली झरने नुमा पानी आता रहता है, तो हमने उस पानी को पिया है और बेहद ठंडा और मुंह से निकला वाह। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज के टेक्स्ट में स्वर्ग से लेकर धरती, प्रकृति और प्राकृत के जीवों से लेकर सुरों को भी शामिल किया गया है। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि आपने प्रकृति का संगीत कभी महसूस किया है? उसके हर रंग संगीत में समाया हुआ है, जो अपनी थाप पर बजता है। उसका निर्देशन कभी हवा करती है तो कभी बादलों की गड़गड़ाहट उसे मीलों तक पहुंचा देती है। आजकल के सावन के मौसम में रात में झिंगुर की तान, मेढकों का लय ताल आवाज करना मन को भाता है, कानों को अच्छा भी लगता है। रात के सन्नाटे में पपीहे की बोली तो विरहिणियों के लिए जैसे जहर का प्याला लगता है, क्योंकि अभी प्रियतम दिवाली का वादा करके गया और ये पक्षी पी कहां बोलते बस बेचैनी बढ़ा रहा है। रही सही कसर झूमती पुरवाई भी निकाले, जिसने काले बादल घुमड़ कर आ रहे हैं और घर आंगन को तर कर दे रहे हैं। ऐसे में आधी रात में कड़कती बिजली तो जान ही निकाल देती है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गीत जीवन की बहार है और जब बारिश का मौसम हो तो चारों ओर झमझमा करके रागिनी की बहार आ जाती है। गीत नदी की धारा के समान है। संगीत कठिन वक्त के लिए औषधि की तरह है। कितना भी कठिन वक्त हो, संगीत मन और दिल के लिए राहत की तरह है। तो ऐसी ही एक राहत यानी ऐसा ही गीत आपके पास पहुंचा रहे हैं। हमें बताइए कि इस गीत में आवाज किसकी है और फिल्म का नाम क्या है। और हाँ, ये भी बताते रहिए कि क्या आपने प्राकृतिक जलाशयों में कभी कुछ नहाने या फिर पानी पीने या अवसर पैर डुबाकर उस पर जल को महसूस करने का कोई काम किया है? किया है तो वो किससे हमसे बताइए। और कौन से प्राकृतिक जगहों की आपने यात्रा की है जब आपके मन को ऐसा लगा कि यहाँ से वापस जाना ही नहीं है?

लड़की फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और गीता दत्त की आवाज़ें। और हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में खेतों में बहुत ही घूमे हैं, खूब हरियाली होती थी, नहरों का पानी पिया है, तालाब में बहुत नहाए हैं। तो हम ये कहेंगे कि आपको प्रकृति का बड़ा ही सुकूनदायक एक साथ मिला है हमेशा। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि गीत का बताने, संगीत के बगैर जीवन अधूरा लगता है। बच्चों के रोने हंसने बात करने समय हवा से सरसराते पेड़ पत्तों की आवाज, गाय भैंस के रंभाने में भी कुछ संगीत का पुट होता है। जब कभी मन बहुत उदास हो, किसी भी काम में मन ना लगे, तो खूबसूरत गीत सुनने से मन हल्का महसूस करने लगता है। संगीत सुनते रहने से अनेक रोग भी कम होते हैं। बिल्कुल सही बात आपने कही, संगीत से तो कई रोगों का इलाज भी होता है। संगीत पद्धति भी इसके लिए काम आती है। हमारे साथी कह रहे हैं हमें तो प्रकृति के साथ रहना बड़ा ही अच्छा लगता है। यदि हमें काम ना हो तो हम बस प्रकृति के साथ रहना चाहेंगे, पर हम घर में रहकर ही इसका अनुभव कर लेते हैं। वो ऐसे कि पक्षियों की आवाज में भी संगीत और पत्तियों पर पड़ती बारिश की बूंदों में भी अद्भुत संगीत महसूस किया है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न सुर ताल का अद्भुत संगम है। आज ऊंचे ऊंचे घने जंगलों और ऊंचे पर्वत से पहाड़ों को चीरती हुई झरनों का अद्भुत शोर और संगीत पूरे प्रकृति से लोगों के मन मोह लेती है। और हरे हरे पेड़ों और उसकी शाखाओं से बारिश की बूंदे प्रकृति के सौंदर्य को अलग से खुशनुमा बना देती है। पत्तों पर बारिश की बूंदे गिरती है तो थपथपाहट से एक तालबद्ध संगीत सुनाई देता है। एक हल्की सी नरम आवाज पैदा होती है जिससे पक्षी भी शांत हो जाते हैं। बस पानी के बरसने का प्राकृतिक शोर ही सुनाई देता है। छोटे छोटे तालाबों में पानी की बूंदें गिरने से एक तालाबों में गोल घेरे बनते हैं, तो अजीब तरह का एक संगीत इससे उत्पन्न होता है। वहीं हमारे और साथी बता रहे हैं कि प्रकृति का संगीत शब्दों का मोहताज नहीं होता, सीधे दिल से बात करता है। सुबह की पहली किरण के साथ चिड़ियों की चहचहाट जैसे कोई राग अलापती है, पत्तों की सरसराहट में बांसुरी की तान सुनाई देती है, और दूर बहती नदी की कलकल में तबले की थाप, बारिश की बूंदें जब छत और मिट्टी पर गिरती है तो लगता है धरती खुद कोई करुण गीत गा रही है जिसमें खुशी भी है और विरह भी। जंगल की गहरी रात में झिंगरों की झंकार और हवा का सन्नाटा मिलकर ऐसा सन्नाटा रचते हैं जो सबसे ऊंचा संगीत बन जाता है। ये संगीत ना किसी सभा में बजता है, ना किसी स्टेज पर जहां हम रुक कर सुने। जिस दिन हम सच में सुन लेते हैं, उस दिन समझ आता है कि प्रकृति हमें हर पल बिना मांगे सुकून का सबसे पुराना राग अलाप रही है। तो ऐसी बहुत सी बातें हमारे साथी कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्राकृतिक स्थान पर अगर आप जाते हैं तो कुछ देर अगर आप शांति से वहां रुकते हैं तो इतनी अच्छी अच्छी आवाजें आपको सुनाई देती हैं कि आपका मन अपने आप शांत हो जाता है। हालांकि जब हम किसी प्राकृतिक जगह पर जाते हैं तो अपने अंदर इतना शोर भर कर ले जाते हैं कि उसकी खूबसूरती देखकर ही कभी कभी हमारे मुंह से कुछ बातें निकल जाती हैं, कभी हम बहुत सारी फोटोज खींचने के चक्कर में रह जाते हैं और उसका आनंद नहीं ले पाते। तो फोटोज भी लीजिए यादों के लिए, लेकिन कुछ देर शांति से बैठकर उस वक्त को महसूस कीजिए। कुछ ऐसी ही बात कर रहा है ये गीत। हमें बताइए आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

मिशन कश्मीर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें बिल्कुल सही पहचाना हमारे सभी साथियों ने। और हमारे एक साथी बता रहे हैं कि आज मैं महाराष्ट्र के हरिहरेश्वर की बातें बताती हूँ। वहां हम लोगों को सुकून देता पल मिला। रात में समुद्र इतना शोर मचा रहा था कि मन वहीं रहने को कह रहा था और दिन में गजब का समा था। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि शिमला उन्हें बहुत पसंद है क्योंकि वो उनका नेटिव प्लेस है और वहां की प्रकृति उन्हें बहुत अच्छी लगती है। अगर वो खिड़की खोलकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बादल ही कमरे के अंदर आ जाएंगे और साथ में ठंडी हवा के झोंके। और रात में बारिश की जो बूंदे होती है वो छत की जो टीन की छतें होती हैं उस पर धीरे धीरे जब बरसती हैं तो एक अलग ही अनुभव देती हैं। वहां की लाइफ ही अलग ही पीसफुल है, ऐसा इनका कहना है। वहीं मारिक साथी ने एक दूसरी बात बताई। वो कह रहे हैं कि गंगटोक की वो रात घनघोर बारिश रात भर हो रही थी और सुबह सुबह फोन आया कि उनके भाई सीरियस हैं, आईसीयू में हैं, तो मन सन्न रह गया। आनन फानन में हवाई टिकट करके पहले दिल्ली और फिर दिल्ली से भुवनेश्वर और वहां से सड़क मार्ग से आगे जब गए तो हाथ पांव जोड़कर सबको अलग अलग, क्योंकि भूस्खलन से जाम था तो किसी तरह से वो आगे बढ़े। और बेटी ने एयरपोर्ट से फोन करके मेडिकल इमरजेंसी वजह करके बोर्डिंग पास की सुविधाएं करवा दी थी और आधे घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचे। शाम तक वो अस्पताल पहुंचे, भाई तो ठीक हो गए, लेकिन इस प्राकृतिक प्रकोप के बारे में जो ये जो अनुभव था वो उन्हें अब तक याद है। वहीं हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा के नाइग्रा फॉल में वो प्रकृति का अनुभव जो उन्होंने किया, समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बयां करें क्योंकि ऐसा अद्भुत नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा था। पानी की बूंदे, हवा के रुझान, नाव में बैठे हम, वो लहरें, वो इंद्रधनुष के रंग जब पानी पर पड़ रहे थे और जो झरने बह रहे थे हवा के साथ, उनका संगीत इतना मधुर, इतना सुंदर नजारा हमने देखकर

कुछ देर अपनी आंखें बंद कर ली ताकि बाद में से महसूस कर सके, आंखें भी छलक पड़ी खुशी के मारे। वाकई जब प्रकृति के साथ हम एकाकार हो जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं उसमें, तो आंखों से आंसू बहना वो इतना भाव ज्यादा हो जाता है, कहते हैं भाव विवल हो जाते हैं, और खुशी के मारे जो आंसू आते हैं ना, वो एक अंदर से आत्मसंतुष्टि मिलती है, वो जरूर महसूस करना चाहिए। जल्द ही वो महसूस नहीं होता, कभी कभी अचानक से ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ जुड़ाव हो गया। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि नदी नाले, नर्मदा नदी से पचमढ़ी तक सुंदर झरने, मन को लगे हरने, दार्जिलिंग की यादें ताजा हुई। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हेलो, फरमाइश में उनका कॉल लग गया है, आज शाम वो सुन सकते हैं, सभी साथी ऐसा उनका कहना, हम उन्हें बधाई देते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में सह्याद्री और हिमालय में जब भी गिर्यारोहण को जाता हूँ, हमेशा झरनों का ही पानी पीता हूँ, संग साथियों को भी इसका महत्व समझाता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि इस तरह से झरनों और झीलों को जब हम जाते हैं, प्राकृतिक स्थानों का पानी इतना शुद्ध होता है कि आप उसे जब महसूस करते हैं तो बड़ा ही अनोखा वो अनुभव होता है। हमारे एक साथी कहने की प्रकृति में जो संगीत व्याप्त है उसे नाद ब्रह्म या ईश्वरीय वाणी कहा जाता है। प्रकृति के अलग अलग तत्वों में सजीव संगीत को महसूस किया जाता है। नदियों में बहता कल कल करता जल और झरनों से नीचे गिरता जल, जल तरंग तो कभी वीणा के तारों से छिड़ी सरगम सुनाता प्रतीत होता है। सनसन करती हवाएं जब पेड़ों के पत्तों से गुजरती हैं तो कभी बांसुरी या शहनाई की सुर लहरियां छिड़ती हुई सुनाई देती हैं। बारिश की बूंदों में घुंघरू और पायले के रुनझुन के स्वर सुनाई देते हैं। सभी प्रकृति में समाहित होते ऐसे सुर और ताल है जो प्रकृति के नाद सौंदर्य को पारिभाषित करते हैं। और आपने भी बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी इस बात को अलग अलग तरह के शब्दों के साथ पिरोया है, तो अब तो मन कर रहा है कि क्यों ना एक गीत सुना जाए, और आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है और फिल्म का नाम।

लता मंगेशकर की आवाज में हनीमून फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शैलेंद्र ने इसे लिखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हम बहुत पहले नैनीताल गए थे, वहां के झील में नाव से सैर करने गए थे। उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया, लेकिन हमारे केवट ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि वहां मगरमच्छ का खतरा था। हाँ, तो ये बातें जानना भी बहुत जरूरी है कि किस जगह पर आप पानी में पैर डाल सकते हैं या नहा सकते हैं, क्योंकि बहुत से जीव जंतु वहां वास करते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक बेहद खूबसूरत प्रकृति के बीच बसा है, जिसकी यात्रा हमेशा याद रहेगी। ऊंचे विशाल वृक्षों से घिरे रास्ते चारों ओर फैले।

पहली हरियाली, कल कल बहते झरने और शाम को नर्मदा जी की आरती मन में एक अनोखा सुकून और शांति भर देती है। ऐसा लगता है बस वहीं के होके रह जाएं। हमारे एक और साथी ने एक बात कही कि प्राकृतिक सौंदर्य वाली जगहों पर आजकल लोग ज्यादा जाने लगे हैं, इससे उन जगहों के प्रारूप में विक्षेप आता है। लोग अक्सर उन जगहों को प्रदूषित करते हैं। भाई ये जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी किसी जगह पर हम जाते हैं, हमें वहां जाकर इतना अच्छा लगता है मिलकर, वहां जाकर लोगों से मिलकर, लेकिन जो प्रकृति के साथ सानिध्य हमारा होता है, लेकिन फिर आते आते वो जो कचरे हम वहां छोड़ आते हैं, वो हमारे बाद जो लोग आएंगे वहां देखने, उन्हें कितना बुरा लगेगा। या हो सकता है उन्हें लगे कि वहां कचरे ही डाले जाते हैं उस जगह पर, और हमारा देखा देखी वो एक एक तरह से वो काम बन जाए और सब लोग वही करने लगे। तो इससे अच्छा है कि आप साफ सफाई रखें, जिस तरह की सफाई पर आप जाते हैं उसी तरह से उसे ध्यान रखें। वही हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम पर सब थिरकने वाले हैं, हमने सुना है चिड़ियों का चहचहाना, उसे महसूस भी किया है, उसकी बातों को समझने की कोशिश भी की है, थोड़ा असफल रहे, कभी कभी इस दिल ने उनकी बातें समझी। आपको पता है कभी कभी यूं भी लगा मानो कह रही हो कि इन पेड़ों को मत काटो ना, मत काटो ना, हमारा यहाँ बसेरा है, हमने कई बार छोटी चिड़िया को दाना भी खिलाया है, सुबह सुबह इनका चहचहाना बहुत प्यारा लगता है। हालांकि चिड़िया क्या कह रही है वो तो चिड़िया ही जानती है। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि संगीत सात सुरों में बंधा नहीं होता, अगर महसूस करें तो दैनिक जीवन में संगीत ही संगीत भरा है। कोयल की कूक, पानी की कलकल से लेकर हवा के सरसराहट तक, हर जगह संगीत ही तो है। आवश्यकता है इसे अनुभव अनुभूत करने की, और प्रकृति का अनुपम वरदान है संगीत। यहाँ अनादिकाल से विद्यमान है संगीत के आदि स्रोत, भगवान शंकर माने गए, उनके डमरू और श्री कृष्ण की बांसुरी में संगीत के सुर निकले हैं। माँ सरस्वती के कर कमलों में वीणा की उपस्थिति संगीत की महानता की कहानी कह जाती है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि इस तरह से संगीत हमारे कण कण में बसा हुआ है और देवी देवताओं के साथ भी उसे जोड़ा गया है। हमारे एक साथी एक किस्सा लिख भेजे हैं जो आज ही का एक किस्सा, वो कह रहे हैं छोटी गिलहरी की कहानी। लेकिन उससे पहले जब संगीत के कण कण में होने की बात हमारे साथियों ने कही तो ये गीत हमें याद आता है। बताइए कि इसमें आवाज किसकी है और फिल्म कौन सी है।

सपने फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। हिमा सरदेसाई और मलेशिया की आवाज़ उम्मीद, जावेद अख्तर ने इसे लिखा, ए आर रहमान का संगीत, और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे साथी बहुत सी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन हमने कहा था कि एक गिलहरी की बात जो हमारे साथी ने भेजी, वो कह रहे हैं कि आज इबारत पढ़कर कुछ शब्दों से सजी गीत सोच रहा था कि अचानक छत के मुंडेर पर एक नन्ही सी गिलहरी आई, डरी सहमी सी, कभी नजर आती तो कभी छिप जाती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना चाह रही। तभी मन में विचार आया कि हो सकता है, देखिए ये तो बातें इन्होंने बनाई हैं कि गीतों के बारे में बताने आई है, लेकिन ख्याल आया कि इस ननी गिलहरी को कुछ नाश्ता पानी करवाया जाए। तो तूने नीचे गया, चने बिस्किट लाया, बारीक चूरा करके वहां रख दिया। तो फिर क्या, कुछ ही सेकंड्स में नन्ही गिलहरी आई तो आई, साथ में बहुत सी गिलहरियां आ गई, नाश्ता पानी करने लगी। देखते ही देखते हमारे छत पर गिलहरी कबूतर चिड़ियों का मेला सा लग गया। छत पे खूब रौनक हो गई, गिलहरी और पक्षियों के साथ साथ मेरा मन भी खुश हो गया, जैसे पल भर में कई सारे दोस्त मिल गए। तो सच मानिए आज का दिन बन गया, मन आनंदित होकर खुशी से नाचने लगा। वही हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति का संगीत और जीवन संगीत एक दूसरों का पूरक है। जी हाँ, प्रकृति की हर ध्वनि इंसानी जीवन के सुख दुख और धड़कनों के साथ मिलकर एक संपूर्ण राग बन जाती है। जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं, आशा का ज्वार है, हवाओं की सरसराहट मन की पुकार है, बिजली की कौंध ऊर्जा और क्षण भंगुरता का एहसास है, तो भोर का शांत मौन कोयल की कूक, पपीहे की तान चैतन्यता का तराना है, नई कलियों का खिलना जीवन का मुस्कुराना है। सृष्टि और जीवन दो ऐसे अनंत स्वर हैं जो विश्वव्यापी एक ही सितार पर बिना रुके एक साथ बज रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने प्रकृति के संगीत को मानव के संगीत के साथ या मानव के जीवन के साथ पिरोया। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गाने जैसी इबारत तो अच्छी लगी, पढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे सितार के सरगम पर जो रागिनी बज रही है तो मेरा मन डोल रहा है, जैसे मैं बूंदों के घुंघरू बांधकर कहीं दूर वन में पहाड़ी पर नृत्य कर रही हूँ। हाँ, मैंने सुना प्रकृति का गीत हर दिन हर क्षण। हमारे एक और साथी हैं, वो कहते हैं कि पहाड़ों पर घूमने की याद पुरानी है। 1982 में एक बिजनेस टूर में मसूरी जाने और घूमने का कार्यक्रम बना। मॉल रोड पर होटल में रात्रि निवास के बाद काफी मेंबर कैंपटी फॉल देखने निकला। एक साथ कई गाड़ियों का काफिला वहां पहुंचा। जब झरने में नहाने वालों का कितना लुभावना दृश्य था, वर्णन नहीं कर सकते। नहाते लोगों की फोटोग्राफी का शौक चरम पर था, इसमें महिलाओं की कोई हिचकिचाहट नहीं दिखी। हमारे सभी साथियों ने भी नहाने का लुत्फ उठाया, फोटोग्राफी भी हुई, और फिर दोपहर बाद जब सब होटल लौटे तो वीसीआर पर फिल्म देखी गई सौतन। ये फिल्म कुछ समय पहले ही रिलीज हुई थी, तब आज की तरह नहीं था कि फिल्में लोग वीसीआर पर देख सकते थे तब, या दूरदर्शन के लाइव प्रसारण पर हफ्ते भर बाद फिल्म आती थी। वहीं हमारे एक साथी ने अपनी नैनीताल की ट्रिप याद की और कहा कि वहां की झील में नाव से सैर करने गए थे, उस पानी में पैर डुबोकर मजा लिया, और मगरमच्छ की बातें इन्हीं की हमने पढ़ी थी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं, अलग अलग बातें हमारे साथी कह रहे हैं अपने संगीत की। एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि मनाली में प्रकृति का अद्भुत नजारा देखा, वहां जो पानी था उसका क्या कहना, इतना मीठा पानी तो कहीं का नहीं हो सकता है, ऐसा लगता था मानो गंगा मैया खुद आकर अपनी खूबसूरती बिखेर रही है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से जब प्रकृति के साथ आप जाते हैं और प्रकृति से आप मिलते हैं तो आपको ऐसा महसूस तो होता ही है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कन्याकुमारी के अंतिम छोर पर तीन समुद्रों का संगम, दुबई के समुद्र किनारे के होटल में रहकर समुद्री सुंदरता का अनुभव करना, अमेरिका में न्यूजर्सी का अंतिम छोर के समुद्र का आनंद, नायग्रा फॉल का सौंदर्य, थाईलैंड का समुद्र, और चार धाम यात्रा में सबसे सुंदर उत्तराखंड का आध्यात्मिक वातावरण में आत्मिक शांति का अनुभव जिंदगी भर याद रहेगा। तो आपके साथ प्रकृति से जुड़ी बहुत सी यादें हैं, लेकिन हम यहाँ आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का अगला गीत। आपको बताना है कि आवाज किसकी है और फिल्म का नाम।

दो दुनी चार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, और आपने बिल्कुल सही पहचाना। हमारे साथी कह रहे हैं कि सरगम की बात चली है और हम सब श्रोता संगीत के दीवाने हैं, इसलिए हिंदी फिल्मों के दो बेजोड़ कलाकारों की याद आ रही है। एक तो दिलीप कुमार साहब, जिन्होंने फिल्मी पर्दे पर सितार बजाते हुए सितार पर सही हाथ चले और देखने वालों को वास्तविक रूप में सितार बजा रहे हैं ऐसा दिखे, इसलिए कई माह तक सितार बजाना सीखा। दूसरे कलाकार हैं ऋषि कपूर, जो सरगम फिल्म में डफली बजाते हैं, और इस फिल्म में डफली पर उनकी चलती हुई उंगलियां संगीत और लय के साथ जो चलती हैं वो देखते ही बनता है। दोनों कलाकारों की मेहनत का जवाब नहीं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रकृति में ही सरगम है, इस धरा में संगीत हवाओं में गरजते बरसते बादलों में टपकती बूंदों में रिमझिम बारिशों की फुहारों में कल कल बहते झरने में और चिड़िया की चहचहाहट में हर प्रकार का सुकून भरा संगीत मन मोह लेता है। प्रकृति के संगीत सुनने के लिए बस थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि ये समय समय सुनाई देने वाली धुन है। भोपाल में अच्छी बारिश होने लगी है। होशंगाबाद और भोपाल के बीच बुधनी के जंगलों में इस सीजन में खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हरियाली, बहते झरने और पहाड़ों पर उड़ते हुए बादल, बरसते पानी में मनमोहक दृश्य इस इबारत को बयां कर रहे हैं। तो इस तरह की बातें हमारे साथी कह रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संगीत और प्रकृति दोनों ही

जीवन में संयम और शांति लाने में मदद करते हैं। तो आपको कब ऐसा अनुभव हुआ कि आपके जीवन में शांति लाने में प्रकृति का संगीत मदद कर रहा है, ये हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो किस फिल्म का है, किसकी आवाज में है और क्या आपके साथ ऐसा अनुभव हुआ।

मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। और हमारे एक साथी कह रहे कि इन दिनों कश्मीर के अनेकों शीतल जल श्रोताओं के दर्शन करने का, शीतल जल को छूने का और डुबकी लगाने का मौका मुझे और मेरी धर्मपत्नी को मिला है। भाई देखिए, जल की बहुत बातें हो गई कि अलग अलग जलाशयों में आप गए, पानी में पैर डाला, पानी की आवाजें सुनी, बूंदों की आवाजें सुनी, लेकिन क्या कभी घने जंगलों के बीच गए हैं? तो घने जंगलों का भी तो कुछ बताइए, कहीं ऐसी जगह पे गए हों जहां आपको जीव जंतु देखने मिले हों, शेर चीते बाघ, ऐसे कुछ दर्शन हुए हों, या आपको दर्शन हुए हों नाग देवता के, क्योंकि सावन का मौसम चल रहा है और सावन बहुत सी जगहों पर आ गया। हमारे बहुत से साथियों ने बताया है कि अब गुजरात और दक्षिण भारत के बहुत से भागों में भी सावन अब आ गया है, तो इसकी शुभकामनाएं भी सब दे रहे हैं। और झूले की बात भी इस गीत में हुई, तो ये बताइए कि झूलों का किस तरह से आप आनंद लेते हैं। और अब आपको कार्यक्रम के अगले गीत का आनंद दिलवाते हैं और आपको ये बताना है किस फिल्म का गीत है और किसकी आवाज में।

लाजवंती फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बहुत ही सुंदर और दिल को सुकून देने वाली इबारत है, जब प्रकृति की सुंदर छटाओं के बीच मधुर संगीत गूंजने लगे तो कितना ही बेचैन मन क्यों ना हो, कुछ पलों के लिए तो सुकून मिल ही जाता है। प्रकृति और संगीत दोनों ही हमें गहरी शांति की ओर ले जाते हैं, तो आज के समय में बहुत कम लोगों को जो मिल पाती है ये शांति। सुंदर प्रकृतिक छटा के बीच मधुर संगीत की धुन न केवल मनुष्य को बल्कि पशु पक्षियों को भी भाव कर देती है। और बस ही मोर नाचने लगते हैं, चिड़िया चहकने लगती है, ऐसे में भला हमारा मन मयूर क्यों ना नाचेगा। ऐसे में याद आ रहा है इन्हें मेरी सूरत तेरी आंखें का, नाचे मन मोरा मगन तीगदा दीकी दीकी, जो गीत हमने सुनवा दिया। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मेरे छत के ऊपर कभी कभी गिलहरी आती है तो आवाज लगाती है, उसकी आवाज सुनकर बचपन याद आ जाता है, मैं चूकता नहीं गिलहरी के वीडियो जरूर बनाता हूँ। एक और साथी कह रहे हैं कि पार्क में अचानक बहुत सारे कौवे बोलने लगे तो ध्यान गया कि बंदर महाशय उनके घोंसलों को कुछ कर रहे थे और कौवे ने चोंच मारकर उसे हटाने लगे, तो किसी ने कुछ खाने के लिए दिया तो बंदर वहां से दूर चला गया, लेकिन कौवे ने फिर भी उन्हें चोंच से मारते रहे और दोनों बंदर वहां से दुम दबाकर भाग गए, क्योंकि कौओं का जो इस तरह से एक साथ होना इन्हें बहुत अच्छा लगा। आजकल लोगों के घूमने का स्वभाव में काफी बदलाव हुआ है, महानगरों कार्य व्यस्तताओं से आजीज आकर अक्सर प्रकृति के गोद में जंगल कैंप ट्रैकिंग इको विलेज को प्राथमिकता देते हैं। ज्यादातर कॉरपोरेट जगत की मीटिंग में इसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हमारे एक साथी ने बताया कि सपरिवार हिमाचल की सैर की, जिसमें प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराया। शिमला में आसमान से गिरती बर्फ जो सड़क तक जमी थी और ऊपर से बारिश भी, वही मनाली की हरी भरी वादियां, ऊंचे ऊंचे पहाड़, देवदार के जंगल और तेज ठंडी हवाओं ने मन मोह लिया। हमारे एक और साथी कह रहे कुछ दिन पहले उदास थी, आंखों में बस आंसू छलकने वाले थे कि रात की बची रोटी लेकर छत पर चले गए। रोज सुबह कबूतर और चिड़ियों को दाना डालते हैं, दूसरी बार गए अपना गम बांटने। सच में एक एक करके पानी पीते देखकर हमारे आंसू नहीं छलके बल्कि होंठों पर मुस्कान आ गई। हमारे एक और साथी कह रहे कि बिहार के बहुत सारे जंगलों में मैं गई हूँ, घने जंगलों में भीतर जाने पर बहुत अच्छा महसूस नहीं हुआ क्योंकि बेहद उमस और गर्मी थी। जंगलों में जीव जंतुओं में मुझे छोटे छोटे ब्राउन वाले खरगोश दिखाई दिए और अजगर के बच्चे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं आजकल बर्लिन अपनी बेटी के यहाँ आई हुई हूँ, घर से ही सुरीला सफर सुन रही हूँ। यहाँ मौसम बहुत सुहावना है, गर्मी तो बिल्कुल नहीं है इस समय, और यहाँ सुबह का 10:15 का समय हुआ है। और हम अपने साथियों से ये कहना चाहते हैं, जो घने जंगलों की बात हो रही थी, ऐसा ही एक ऐसी कविता हमें पढ़ाई जाती थी, अगर आपको भी पढ़ने के लिए मिली हो, उस जगह का हम नाम नहीं बता रहे हैं, और उस किसी एक खास जगह का नाम कहकर उसके घने जंगल, ऐसी वो कविता थी। अगर आपको याद आ रही हो तो हमें बताइए, और न याद आ रही हो तो हमें ये बताइए कि जो गीत हम सुनवा रहे हैं वो कौन सी फिल्म का है, किसकी आवाज़ में।

0: जम के भैया हो मोहे लाली जुनर मोहे लाली जुनर या उड़ा दे तो फिर मेरी चाल देख ले मेरे पैरों में घुंघरू बंधा दे तो फिर मेरी चाल देख ले
1: क्या चाल है तोरी
0: जरा झूम ले गोरी

अखियों हाय हाय कोई अखियों से दारू पिला दे तो फिर मेरी चाल देख ले।

0: मुखड़े होए होए जरा मुखड़े से घुंघटा हटा दे तो फिर मेरी चाल देख ले मोहे लाल जुनर मोहे लाल जुनरिया
1: संघर्ष वन से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया और हमने जिस कविता का जिक्र किया था वो सतपुड़ा के घने जंगल भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी कविता, जिसको भी आपने बिल्कुल सही पहचाना। और इसके साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: Tiny-die with passage of 12 bills during monsoon session. Lok Sabha registers only 19% productivity amid opposition uproar. Parliament passes Mines and Minerals Development and Regulation Amendment Bill 2026 to make mining sector more efficient. President Draupadi Murmu confers Sangeet Natak Academy fellowships and awards to over 100 artists. Several U.S. states issue special proclamations to commemorate August 15 as India Day for celebrating independence. Colombia declares an economic emergency to take measures for relief efforts following powerful earthquake. And in Canadian Open tennis, defending champion Ben Shelton to take on compatriot Brandon Nakashima in men's singles final at Montreal. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। कोलंबिया ने शक्तिशाली भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया। और कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के बेन शेल्टन से होगा। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिन में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने अपने समापन वक्तव्य में सदन की कार्यवाही में बार बार आई बाधा पर चिंता व्यक्त की। हालांकि उन्होंने कहा कि सदन ने 12 विधेयकों को पारित और वापस करके अपने मूल विधायी दायित्वों को पूरा किया।
3: The House functioned for only 37 hours and 49 minutes regarding a productivity of 39.17%. We had the opportunity to raise 285 starred questions, 380 zero-hour submissions and 380 special mentions. Sadly, only 16 questions, 52 zero-hour submissions and 93 special mentions could be taken up. The floor was open, but we didn't make the fullest use of the opportunities.
1: श्री राधाकृष्णन ने बताया कि राज्यसभा की कार्यवाही केवल 37 घंटे 49 मिनट चली, जिससे सदन में 39.17% ही कामकाज हुआ। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी में अपनी जनसभा के बाद रामलीला मैदान में किए गए हवन का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण में किसी समुदाय और धर्म का उल्लेख नहीं किया।
4: मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को

0: मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाए नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ।
1: सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को आश्वस्त किया कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाए गए मुद्दे की जांच की जाएगी।
2: बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज, नंबर वन। नंबर टू, ये हम सब के लिए खेद का विषय है, देश के लिए भी खेद का विषय है। हम इसकी तहकीकात भी करेंगे, लेकिन उसके बाद खड़गे साहब कहे कि तुम ऐसा करते हो, ये उचित नहीं है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। आज सवेरे सदन की बैठक शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम 1957 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित की है और इन खनन संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए नीलामी आयोजित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्ष में कोयले का अधिकतम उत्पादन किया गया है।
2: भारत सरकार चाहते हैं मिनरल का रेट्स देश भर में एक स्थित हो। अभी अध्यक्ष जी, ये लोग नरेंद्र मोदी की सरकार को सिखाने का जरूरत नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ नरेंद्र मोदी सरकार 12 साल से देश के हित के लिए काम किया है।
1: चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा के तरुण चुघ ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि कानून खनन क्षेत्र में पारदर्शिता और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने विधेयक का विरोध करते हुए आशंका व्यक्त की कि इसका संघवाद और खनिज समृद्ध राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता पर प्रभाव पड़ेगा। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के वाईवी सुब्बू रेड्डी ने खनिज संसाधनों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की। ऑल इंडिया ना डीएमके के डॉ एम तम्बीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के प्रोफेसर मनोज कुमार और बीआरएस के रवि चंद्र वड्डीराजू सहित अन्य सदस्यों ने भी चर्चा में भाग लिया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि संसद बहस, चर्चा और विधायी कार्य के लिए है, लेकिन मानसून सत्र में लगातार नारेबाजी और विरोध प्रदर्शनों ने सदन के कामकाज को प्रभावित किया।
3: अपोजिशन डिस्कशन से भाग रहे थे। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में अपोजिशन डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार उसका जवाब देते हैं। ये तरीका होता है, क्योंकि लोगों ने हमको चुना देश सेवा के लिए। तो पहले बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और अपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने संसद परिसर में आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष को लोकतंत्र या संसदीय परंपराओं में कोई विश्वास नहीं है।
4: इन लोगों की लोकतंत्र में, संसदीय परंपराओं में कहीं कोई आस्था नहीं है, ना ही ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का कोई सम्मान करते हैं। इन्होंने जब जो कहा सरकार ने माना और पहले दिन से कहा कि हर प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। लगातार इन्होंने पेपर लीक के संबंध में जो विषय उठाया उस पर चर्चा हुई। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी इनसे कहा कि आप सीट पर जाइए, हम देर रात तक चर्चा करेंगे, लेकिन इनकी कोई मंशा नहीं थी, इन्हें सिर्फ शोर शराबा करना है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
5: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
6: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहां जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं, आप उस पे FIR करोगे? क्या न्याय है?

0: राहुल गांधी क्या बोलते हो आप, क्या ये FIR जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या आप बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: इस बीच झारखंड में विद्यार्थियों का आंदोलन जारी है, ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: रांची में आंदोलनकारी छात्रों द्वारा मुख्यमंत्री आवास के घेरने की रणनीति संबंधी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मुख्यमंत्री आवास के निकट पूरे कांके रोड में ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई है। कड़ी सुरक्षा और रूट डायवर्जन को लेकर इस मार्ग पर आवागमन भी बाधित है। इधर भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आंदोलनरत छात्रों की मांगों को जायज ठहराया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेटा।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार कला, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कला, कठपुतली कला, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कलाओं में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। अकादमी फेलोशिप के तहत 3 लाख रुपए की राशि और अकादमी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि के साथ साथ ताम्रपत्र और अंगवस्त्रम दिया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं।
3: कला से जुड़े प्राचीन विद्वानों ने भारतीय नाट्य की बड़ी व्यापक परिभाषा की है। उनके अनुसार नाट्य जीवन का ही पर्याप्त है, जीवन के ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा नाट्य अपने भीतर ग्रहण ना कर सके और फिर व्यक्त ना कर पाए। उनकी परिधि में आध्यात्मिक ज्ञान से लेकर शास्त्रीय विद्या तो हस्त कौशल से लेकर संगीत और नृत्य तथा मनुष्य के विभिन्न कर्म और व्यवहार समा हुआ है।
1: गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज तिरंगा फहराने के साथ साथ हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है और हर भारतीय में गर्व की भावना जागृत कर रहा है। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने आज नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डा क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा को रवाना किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस पहल को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया पर अपार गर्व और प्रसन्नता व्यक्त की।
4: मुझे बहुत खुशी है और गर्व भी है। आज हमारे मंत्रालय में हमने तिरंगा यात्रा निकाला। ये हर घर तिरंगा कार्यक्रम हर राज्य में, गांव में व्यक्ति इसमें जुड़ रहा है। ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये जरूरी भी है। हम विकसित भारत 2047 तक जो हमारा लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसको पाने के लिए हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए।
1: स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किले में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। अभी हाल ही में डेलावेयर राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने आदेश पर हस्ताक्षर कर सभी नागरिकों से भारत दिवस मनाने का आग्रह किया। इससे पहले न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी और मैसाचुसेट्स ने ये आदेश जारी किए थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कोलंबिया के राष्ट्रपति एबेलार्डो दालास प्रियेजा ने जबरदस्त भूकंप के बाद राहत और पुनर्निर्माण उपायों के लिए आर्थिक आपातकाल घोषित किया है। कोलंबिया में इस सप्ताह सोमवार को आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में 265 लोगों की मौत हो चुकी है और 3,494 लोग घायल हुए हैं। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कोलंबिया में भूकंप से हुए जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि भारत कोलंबिया को हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। कनाडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स फाइनल में अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा का मुकाबला अपने ही देश के

0: शेल्टन से होगा। आज सेमीफाइनल में ब्रेंडन ने स्पेन के राफेल जोडर को और शेल्टन ने लर्नर टियन को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मॉनसून सत्र में 12 विधेयकों को पारित किए जाने के बाद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% कामकाज हुआ। खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने के लिए खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित। इससे देश के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल बनाने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। अमेरिका में कई राज्यों ने 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे अंग्रेजी और हिंदी में दोपहर समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए पुनः सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम। रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

मोहम्मद रफी की आवाज में सूरज फिल्म का गीत आपने सुना, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। सदाबहार नकमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर, और आज इस कार्यक्रम में वैजंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

0: गंगा जमुना फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी ने इसे लिखा, नौशाद का संगीत, लता मंगेशकर की आवाज।
1: राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ, आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर। हम मना रहे हैं स्मृति उत्सव।
2: शस्य श्यामला मातरम् वंदे मातरम्।
1: सुनना न भूलिए लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। वंदे मातरम एक जय घोष, प्रसारण प्रति शुक्रवार सुबह 8:15 पर, पुनः प्रसारण उसी दिन दोपहर 2 बजे। लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और इस कार्यक्रम में आज वैजंती माला अभिनीत फिल्मों से गीत।

संगम फिल्म का ये गीत मुकेश और साथी की आवाज में आप सुन रहे थे। शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में आप सुन रहे हैं विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आम्रपाली फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, शैलेंद्र के बोल तर्ज शंकर जयकिशन की।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

अजब ही मजा, कोई देखने वाला आशिक तो नहीं, तो ये जलवे हैं पूछते दिए, कोई मिटने वाला एक आशिक तो, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जान तमन्ना किधर।

इंसाफ करता रहे, बुरा कह गया या भला कह गया, बदन में सितारे लपेटे हुए ओ जान।

0: सितारे लपेटे हुए हो जान रमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तुझे ना जाए, जरा पास आओ तुझे ना जाए।
1: मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे प्रिंस फिल्म का ये गीत, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।
2: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
3: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
2: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
3: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक,
2: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
3: जी।
2: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
3: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
2: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
3: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, मन्ना डे और साथियों की आवाजों में शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत, फिल्म मधुमती।

अब आज का सदाबहार नगवे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। नेहा आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको मेरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार।
1: क्या हाल है
2: भाई? हाल तो ठीक है।
1: आज हमने देखा आपको कि एक तो सजीव प्रसारण में आप लगातार बोल रही थी
2: जी।
1: और उसके पहले मैंने देखा कि हाथ में कुछ क्रोशिया का बिनाई भी कर रही थी और साथ में अखबार के बंडल भी लिए हुए थी पढ़ रही थी। तो ये काम के साथ साथ एक साथ इतने सारे शौक निभा लेती हैं?
2: वो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि देखिए काम तो करना ही है ममता जी, लेकिन साथ में अगर कुछ ऐसे काम कर लिए जाए जिससे मन बड़ा प्रसन्न रहे तो अच्छा लगता है। शौक हमारे ये अच्छे रहते हैं।
1: हाँ, और ये शौक बचपन से डेवलप होना चाहिए
2: जी।
1: अगर बच्चों में, छोटा बच्चा नहीं जानता कि उसको क्या शौक है, लेकिन माता पिता देखते हैं। मेरा तो ये कहना है कि मेरा जो निजी अनुभव और निजी सोच है वहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अभी माता पिता और परिवार की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों में कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर की ओर उन्मुख करना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं, नौकरी पेशा करने लगते हैं और जाहिर सी बात है कि आपके पास दोहरी तेरी जिम्मेदारियां हैं, तो कहीं न कहीं प्रेशर फील होता है आपको
2: जी।
1: और कहीं न कहीं तनाव महसूस होता है। तो ऐसे में अगर आपके काम के साथ कोई अलग भी शौक है, हुनर है, तो आप उसमें अपने को डाइवर्ट करके खुश रह सकते हैं। मान लीजिए हम दफ्तर में, हम या आप सभी दफ्तर में 8 घंटे 9 घंटे काम करते हैं और अभी तो बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी जगहों में 12-12, 14-14 घंटे काम होते हैं। तो उतना इतना काम करने के बाद एक ऐसा समय होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए खुद के लिए जहां पर आप अपने मन का करें, अपने शौक पूरे करें।
2: बिल्कुल। और जैसे कि ये कह सकते हैं इन दिनों तो, क्योंकि ज्यादातर काम तो स्क्रीन के थ्रू ही होते हैं, आप कंप्यूटर देख रहे हैं, आप फोन देख रहे हैं, कुछ भी अगर वर्क फ्रॉम होम भी करें तो आप कंप्यूटर और फोन से जुड़े रहना पड़ता है पढ़ाई के लिए भी। तो ऐसे समय में जब हम अपने किसी शौक की तरफ जाते हैं तो कुछ देर उससे भी दूर हो जाते हैं। तो क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन या ऐसा हम जब स्क्रीन देखते रहते हैं तो हमारा दिमाग थोड़े अलग तरह से चलता है, और जब हम अपने शौक की तरफ जाते हैं तो धीरे धीरे शांत भी हो जाते हैं और बहुत सी अच्छी अच्छी गतिविधियां हमारे मन में होती, भावनाएं अच्छी आती
1: और कई नकारात्मक

0: बातें जब होती हैं कहीं इर्द गिर्द तो वो आप भूल जाते हैं।
1: जी
0: तो इसलिए आप अपने कामकाज के साथ साथ कोई ना कोई शौक जरूर पालिए, और वो कहते हैं शौक का नशा होना चाहिए। तो हमने तो इतनी सारी बातें कह दी, लेकिन हमारे श्रोता क्या कहना चाहते हैं, मुझे कुछ कहना है जो एक सेगमेंट है उसके अंतर्गत हमें इंतजार है कि हमारे श्रोता अपने अनुभव साझे कि वो अपने काम के साथ किस तरह के शौक पालते हैं, कि पढ़ाई लिखाई का शौक है उन्हें,
1: जी
0: पिक्चर देखने का, घूमने का, या फिर कुछ बिनाई कढ़ाई का शौक है, पेंटिंग का शौक है, चित्रकारी का शौक है, तो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता।
1: बिल्कुल। और इसके साथ ही आज हम लोग कुछ विषय और भी लिए आए हैं उनके लिए, जैसे आज विश्व अंगदान दिवस है तो इस पर बातें होंगी। और कहानी पद्मश्री की में आज हम लेने वाले हैं पेट्रिशिया मुखीम की बातें, समाज
0: जी
1: सेवा से वो जुड़ी हैं।
0: और कई बार ये तो शौक की बातें हमने की
1: जी
0: जहां पर आप खुश हो लेते हैं, लेकिन कई ऐसे दुखद जगह दुखद घटनाएं होती हैं, जहां जाते हैं वहां पर भी देखा है लोग कि कहीं शोक मनाने जा रहे हैं और बढ़िया जरी वाली साड़ी पहन के, तैयार
1: जी
0: होकर, लिपस्टिक लगाकर, ये महिलाओं की बात है, पुरुषों के लिए भी कि अच्छे शर्ट वर्ट पहन के बढ़िया तैयार होकर गए और वहां पहुंच के बहुत तपाक से किसी से गले मिलना, नमस्ते करना और हाथ मिलाना,
1: जी
0: लेकिन वहां का एक शिष्टाचार होता है उसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि आप दुख मनाने गए हैं, पता चला कि आप बड़े खुशहाल नजर आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। तो
1: दुख
0: अब
1: में गए हैं तो उस तरह से, मतलब एक अपनी भावना भी उस तरह की होनी चाहिए, दिखावे के तौर पर नहीं, लेकिन एक अपनी भावना, क्योंकि हम गए तो उसी लिए हैं। और साथ ही साथ आज हम जो एक और विषय लिए आए हैं वो है बारिश में कीड़ों के काटने पर क्या उपयोगी टिप्स हम अपना सकते, क्या करना चाहिए हमें।
0: बिल्कुल, तो ये सारी बातें हैं और हमारे श्रोता भी इस बारे में टिप्पणियां करेंगे विविध भारती
1: जी
0: के फेसबुक पेज पर जाकर। अब हम सुनवाते हैं श्रोताओं को एक गाना, ये

0: तो हम अपने सखियों सहेलियों को बहुत सी बातें करते रहते हैं ममता जी, और आज विश्व अंगदान दिवस है जो कि हर वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है, और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है कि अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाए और इससे जुड़ी जो भ्रांतियां हैं उन्हें दूर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अंगदान करने से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं उसे दूर करने के लिए आज का दिन मनाया
1: अब
0: जाता है।
1: मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो चुका है ना कि ये
0: जी
1: जो भ्रांति है इस बारे में सोचना भी निरर्थक है।
0: जी
1: अब तो अगर आपके एक अंगदान से किसी की जान बचती है, किसी को जीवन मिलता है,
0: जी
1: तो इससे बड़ा उपकार क्या हो सकता है? अगर जो लोग ये मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक रूप से कोई नुकसान होना
0: जी
1: है, तो
0: जी
1: उनको यही मानना चाहिए कि ये तो और उपकार एक तरह का
0: पुण्य
1: ईश्वर
0: के
1: की
0: साथ
1: पूजा,
0: जुड़ा।
1: पुण्य की तरह
0: जी
1: पुण्य से जुड़ जाता है, तो इसलिए अंगदान करने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए, ना ही ज्यादा उसमें चिंता करनी चाहिए। डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें,
0: जी
1: और अंगदान के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिन को हम याद करते हैं, जैसे गुर्दा, हृदय, अग्नाशय, आंखें, किडनी और फेफड़े जैसे अंगों का दान गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की जान बचा सकता है, ये हमें
0: बिल्कुल
1: ध्यान में रखना चाहिए।
0: हाँ, और ये अंगदान के लिए अगर किसी को करना हो तो इसके लिए बहुत सारी संस्थाएं भी मौजूद हैं, और अपनी सहमति से ही होता है। अगर आप 18 साल के व्यक्ति हैं तो 18 साल के जो भी हैं उन वो अपने अंगदान को जीवित रहते हुए भी आप अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं। उसके लिए एक फॉर्म होता है, वो आप भर देते हैं, और उसके बाद जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके बाद अगर उसने अंगदान करने का ये संकल्प लिया है तो उसके जिन जिन अंगों को वो देना चाहता है वो सभी अंगदान के तहत ले लिया जाता है। और अगर 18 वर्ष से कम की आयु हो और माता पिता चाहते हो, अगर माता पिता ने खुद भी अंगदान किया हो और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी करें, तो वो उसके पहले एक फॉर्म भर सकते हैं और उसको अपनी अनुमति से वो अंगदान के लिए कह सकते हैं। हालांकि बच्चा अगर 18 वर्ष का होता है और वो नहीं चाहता है तो वो इस चीज से मना भी कर सकता है। और पहला अंगदान किया गया था 1954 में, रोनाल्ड ली हेरिक ने अंगदान किया था सबसे पहले अपने जुड़वा भाई को, उसने उन्होंने किडनी दी थी और ये सफल एक ऑपरेशन हुआ जिसके तहत दोनों ही स्वस्थ रहे काफी लंबे समय तक। और उसके बाद धीरे धीरे अंगदान का महत्व भी लोगों को समझ में आया और जो हमारा साइंस है किस तरह से तरक्की करा, और अब तो बहुत ही अच्छी तरह से ये सारी चीजें हैंडल की जाती हैं। पहले तो कुछ मुश्किलें भी आती थी लेकिन अब इतनी तरक्की हो गई है कि तुरंत ही छुट्टी भी मिल जाती है। इन दोनों जो पहले जिन ऑपरेशन को बहुत बड़ा माना जाता था वो तो आजकल बिना चीर फाड़ के लेजर के जरिए हो जाते हैं, और अंगदान जैसी जो चीजें हैं वो बहुत ही आम होती जा रही है। और जरूरी नहीं है कि आप एक एक डोनर लिस्ट होती है और उसमें आप जिनको भी अंग चाहिए, जिसे भी कोई गंभीर बीमारी है वो उस लिस्ट में अपना नाम उसमें रख सकते हैं, और उसके उनके अनुसार उनकी जो अवस्था है, उनकी आयु है, उनकी किस तरह का रहन सहन है उसे
1: क्षमता
0: देखकर,
1: उनकी कितनी, शारीरिक क्षमता
0: हाँ
1: कितनी है।
0: वो देखकर इस तरह की लिस्ट को देखा जाता है। और जो भी कोई अंगदान करता है और अंग मिलता है तो उसे इस तरह से तुरंत उन्हें बताया जाता है कि अब
1: हाँ।
0: एक उनके लिए अंग ऐसा मिला है जिसे वो ले सकते हैं।
1: और एक चीज और है, कुछ अंग के कुछ हिस्सों के लिए पहले से बताना पड़ता जो मृत्यु के बाद ही हो सकता है, जैसे
0: जी
1: आंख, नेत्रदान।
0: जी
1: तो नेत्रदान के लिए आपको पहले जिस फॉर्म का जिक्र आपने किया वो फॉर्म
0: जी
1: भर लिया जाता है, और आंखों के दान के लिए कुछ समय सीमा होती है,
0: जी
1: समय उस समय सीमा के अंदर ही आपको नेत्रदान किया जाता है,
0: जी
1: करना पड़ता है। तो ये बात हो गई, और किडनी और ये सब चीजें तो आप जीवित रहते भी दान करते हैं,
0: जी
1: लेकिन हाँ इन सब में खतरा बस इतना होता है कि आप अपनी इच्छा से ऐसी मुहिम ना चलाएं या कहीं डॉक्टर को कन्विंस ना करें, डॉक्टर जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए
0: जी
1: कि आप उसके लिए उपयुक्त हैं या नहीं। बहुत सारे लोग ब्लड डोनेट करने के लिए भी, रक्तदान के लिए भी
0: जी
1: चिंतित हो जाते हैं कि अरे मेरे शरीर से इतना सारा खून निकल जाएगा तो हमें कमजोरी आ जाएगी,
0: जी
1: वो डॉक्टर से पूछते भी हैं कि हमें चक्कर वक्कर तो नहीं आएगा। तो ब्लड डोनेट करना तो बहुत आम बात हो गई है आजकल, इसमें
0: जी
1: कोई भी खतरा नहीं होता है, बस कुछ मिनट के लिए डॉक्टर वहां पे आपको बिठाते हैं रेस्ट करने के लिए, बाकी आप तो रक्तदान कर सकते हैं। तो अंगदान के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, अगर आपके अंगदान से किसी को जीवन मिले तो आपको इस बात से खुश होना चाहिए। और अब
0: एक गीत सुनते हैं।
1: तेरे

0: हाँ
1: जी
0: मोबाइल के स्क्रीन पर आप लगातार कुछ देख रहे हैं। किसी श्रोता ने कुछ लिखा है अंगदान के विषय में क्या?
1: हाँ, बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे सभी श्रोता, सुधी श्रोता है कह सकते हैं, क्योंकि उनको हर विषय में कुछ ना कुछ पता होता है। तो अंगदान के विषय में भी हमारे श्रोता ने लिखा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, लोगों को मनन करने और अपने अंगों को दान करने के प्रति जागरूक करता है। मानवीय कार्य किसी के परिवार में खुशियां ला सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है, तो इसलिए जागरूक करने के लिए दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हमने एक एक कहानी उन्होंने बता रही है कि वो उन्होंने सुनी इंस्टाग्राम पर, 25 साल के गौरव की कहानी, जो ब्रायन दर्द के कारण अपनी जान खो दी उन्होंने, लेकिन अपने सारे अंगों को दान कर दिया और करीब 2 से 2.5 घंटे में उसका जो दिल है उसको अहमदाबाद से शायद गुजरात के सूरत पहुंचाया गया। हम सबको इस कहानी से प्रेरणा नहीं चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और हम सबको अंगदान के विषय में सोचना चाहिए। और उस छोटे से बच्चे को भी बहुत सलाम जिसने छोटी सी उम्र में इतना कुछ देखा, और जान जाने के बाद भी उनके माता पिता ने अंगदान किया और कम से कम 4-5 जिंदगी बचा कर वो इस दुनिया से गए।
0: क्या बात है, कितनी सजगता की बात है ये। इससे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। और नेहा, जीवन में सुख दुख का सिलसिला तो लगा ही रहता है।
1: जी
0: कहते हैं कि भले ही आप किसी के सुख में शामिल ना हो, लेकिन दुख में साथ जरूर निभाना चाहिए। हालांकि सामाजिक तौर पर कई बड़े, मतलब ये हमें पता नहीं चलता है बड़े मौकों पर कि किसी के शोक में कैसे शामिल हुआ जाए। कई
1: जी
0: बार तो ये भी आता है, लगता है कि बहुत जो

0: नजदीकी लोग हैं, और अचानक अगर इस दुनिया से चले जाते हैं तो फिर समझ में नहीं आता कि कैसे ढांढस बंधाए,
1: जी
0: कैसे हम उनके दुख पर फाहा रखें। लेकिन कुछ बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। और जैसे हम शोक के माहौल में जैसे ही पहुंचते तो आमतौर पर आदत होती कि क्या हुआ था ये हमें जानना है, तो हम पहुंचकर लगातार बार बार पूछताछ करते रहते हैं। हाँ, सामने वाले व्यक्ति भी आमतौर पर वो चीजें बताते होते हैं क्योंकि उन्हें भी पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर वो नहीं भी बता रहे हैं तो हम बार बार उनसे पूछते रहते हैं क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आगे क्या हुआ। तो इससे क्या होता है, वो उस पल को लगातार उन्होंने बताया होगा आपके पहुंचते तक भी, और बार बार आप उन्हें याद कराते हैं तो मानसिक रूप से वो थक चुके होते हैं कई बार, लेकिन बार बार वो चीजें पूछते रहने से जो शोक में व्यक्ति है वो उससे निकल ही नहीं पाते, कुछ और ज्यादा उसमें गहरा जाते हैं। तो ऐसा करना भी थोड़ा उचित नहीं है।
0: बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और कई बार लोग शोक में जाते हैं और कुछ ही समय में हंसी मजाक करने लगते हैं,
1: हाँ
0: भले ही आप कई दिनों बाद किसी परिचित से मिल रहे हो, लेकिन मौके को देखकर व्यवहार करना सही रहता है।
1: जी
0: अब ये जरूरी नहीं कि आप बेवजह रोते रहें, लेकिन शांति से पास में बैठना, चुपचाप बैठना भी एक तरीका होता है, और एक कंधे पर अपनेपन से भरा हाथ रखना भी आपकी भावना को दर्शा सकता है। आजकल यहाँ मतलब बड़े शहरों में कहें, महानगरों में आजकल ये परंपरा हो गई कि किसी के विदा होने पर लोगों को ये मतलब एक तरह से बुलाना ही कहते हैं,
1: जी
0: मैसेज डाल देते हैं, लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था भी कर दी जाती है,
1: जी
0: चाय नाश्ते की भी व्यवस्था कर दी जाती है, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो लोग वहां भी जाकर खाने खाते पीते समय बातें करते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं कि ये पसंद है, वो नहीं पसंद है, अरे ये हम नहीं खाते हैं, फिर वो रेसिपी बताना शुरू हो जाता है कई लोगों
1: जी
0: को हमने देखा। तो ये ठीक नहीं है। खाने पीने की व्यवस्था लोग इसलिए करते हैं कि बहुत दूर दूर से आप आए हैं और बेचारे खुद नहीं खाते हैं, आपके खाने की व्यवस्था किए, तो
1: जी
0: वहां पर बैठ खड़े होकर मीन मेक निकालना या अपनी पसंद नापसंद जाहिर करना ये भी ठीक नहीं लगता है।
1: और कई बार ये भी बताने लगते कि भाई वो मेरा जो फलाना दोस्त था, वो जो एक रिश्तेदार था, वो भी ऐसे ही हुआ, उसका ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, फिर विस्तार में उसका बताने लगते। कई बार जो शोक संतप्त परिवार है उसी के सदस्य को बताने लगते, उन्हें भी कई लोगों से मिलना होता है क्योंकि सब उनसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में आप उन्हें पकड़ कर बैठ जाते हैं और आप उनके दुख को बांटने गए, उनको बढ़ाने तो गए नहीं है, तो ये करने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है क्योंकि इन दिनों बहुत से लोगों की तबीयत खराब रहती है, उतनी अच्छी नहीं होती, कुछ एक खास डाइट उन्हें फॉलो करनी पड़ती है, तो ऐसे में हो सकता है कि आप वहां जाके हो सकता है कि उनकी परेशानी बढ़ा दें। आप
0: बिल्कुल
1: कहेंगे मैं तो ये नहीं खाता, मुझे तो ये चाहिए, या मुझे वो नहीं चाहिए, या मुझे तो अभी 1 घंटे के अंदर ही खाना चाहिए, मेरे हाथ पैर कांपने लगेंगे। तो इस तरह से अगर जब आप पहुंचते हैं तो कई बार वो परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए ऐसी जगह पर फिर आप फोन के जरिए भी उन्हें अपनी भावनाएं बता सकते हैं, और वो यकीन मानिए वो बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि इतने लोग आते हैं उस बीच में, अगर आप बाद में भी जाते हैं तो ये ठीक लगता है, बजाय कि आप वहां जाकर अपनी जरूरतों की डिमांड करें कि हमको ऐसे ही रहना या यहाँ ही बैठना है, तो ये थोड़ी मुश्किलें पैदा कर देता है।
0: बिल्कुल सही बात है। और किसी भी शोकाकुल व्यक्ति के सामने बैठकर ये कहते रहना कि उन्होंने जिस अपने को खोया है उसे क्या क्या काम बाकी रह गए थे, जैसे परिवार में किसी का विवाह जन्म जैसी बातों को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि इसकी शादी देख लेते या नाती पोता देख लेते तो फिर
1: हाँ
0: जाते, थोड़ा और रुक जाते। ये कहना भी शोक को कम नहीं करता है बल्कि बढ़ा जरूर देता है। अगर आप ऐसा कहने से पहले ध्यान से सोचे तो आपको ये भान होगा कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ न कुछ अधूरा छोड़ ही जाता है, पूरा
1: जी
0: नहीं कर पाता है। और मृत्यु किसी के हाथ में तो नहीं होती है ना,
1: हाँ
0: मृत्यु तो लिखा होता है, जिस दिन जिसको जाना है वो चला ही जाता है। तो ऐसे में ये सब कहना कि अरे क्या बताएं, छोटे छोटे बच्चे हैं और इतनी सारी जिम्मेदारियां थी, पैसे भी ज्यादा छोड़ के नहीं गए, तो ये जो सुन रहा है ना उसके ऊपर और दर्द का पहाड़ आप तोड़ते
1: जी
0: हैं।
1: उनको और परेशानियां आप बता रहे हैं, उनकी उनकी क्या क्या परेशानियां आप उन्हें और बता रहे हैं कि क्या क्या जीवन में होना है। और कई बार ऐसा होता है आप गए हैं शोक में शामिल होने के लिए, अपना फोन आप देख रहे हैं या फोन आ रहा है आपको, आप जोर जोर से बातें कर रहे हैं कि भाई इसके यहाँ पर हम आए हैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, और आप बताने लगते हैं, तो ज्यादा मत बोले, बेवजह ना बोले, जितनी सहायता आप अपने आप कर सकते हैं वो कर दीजिए, या शोक से भरे जो किस्से हैं कहानियां हैं वो मत सुनाइए, अपने रीति रिवाज मत बताइए। बहुत से लोगों को होता है कि देखिए हमारे यहाँ ये होता है, नहीं यही करिए ये कीजिए, तो इस तरह से आप बचिए, क्योंकि अगर आपसे पूछ रहे हैं वो तो जरूर बताइए, अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप रहने दीजिए। आप खुद सोचिए कि आप अगर उनकी जगह होंगे तो कौन कौन सा व्यवहार आपको पसंद नहीं आएगा, तो
0: बिल्कुल
1: उसके बाद आप खुद वो व्यवहार नहीं करेंगे उनके साथ।
0: उस समय तो बस शांत भाव से बैठ जाना
1: जी
0: ही, किसी के कंधे पर हाथ रख देना, सिर पर हाथ रख देना ही बहुत होता है। असल असल में उस समय शब्द कुछ काम नहीं करते हैं।
1: जी
0: जब इंसान दुख में

0: होता है तो शब्दों की कोई अहमियत नहीं रह जाती, बस आपके बर्ताव की अहमियत रहती है कि आप हाथ पकड़ के कह दें कि चलो हम हैं आपके साथ, कोई
1: जी
0: जरूरत हो तो बताना, बस इतना ही काफी होता है। और फिलहाल हमें अब चाहिए कि एक गाना सुनवा दें अपने
1: जी
0: श्रोताओं को।

0: आकाशदीप फिल्म का गाना था, और इस गाने से पहले नेहा हम लोग बात कर रहे थे कि शोक के मौके पर जब हम किसी से मिलते हैं, किसी के
1: जी
0: घर जाते हैं, तो किस तरह से शिष्टाचार का ख्याल रखना चाहिए। हमारी एक सखी है जो लिख रही है कि किसी के यहाँ शोक में जाना सबसे ज्यादा सेंसिटिव विषय है और तमाम सवालों से बचना चाहिए। घर में बच्चे या बूढ़े हों तो उनके खाने पीने के लिए जरूर कुछ लेते जाएं,
1: जी
0: बाकी बातों के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। उस दिन बस मौन रहकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। आपका एक सांत्वना भरा हाथ शोकग्रस्त के लिए बहुत बड़ा संबल होगा।
1: बिल्कुल। और हमारे कुछ साथियों ने और भी बातें लिखी, जैसे एक साथी लिखते हैं कि शोक सभा में जाते हैं तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि आपस में बातें करते रहते हैं, हंसते बोलते रहते हैं, चुप चुप करके। बहुत से लोगों को मैंने, मतलब कहेंगे कि थोड़ा चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, जोर से ना करो, लेकिन बातें करते रहते हैं। अगर आप किसी के शोक सभा में गए हैं तो उनके प्रति आपकी संवेदनाएं पूरी हैं, तो वो करें जो परिवार वालों के लिए उस समय होता है, उनके लिए गंभीर मुद्दा है, ये गंभीर बात है, तो ऐसे हंस बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो संवेदना है उसे आप दिखाइए शांति से, उनके पास अगर आप बैठते हैं तो ये ठीक रहेगा, बजाय इस तरह से रहना। और एक साथी कहते हैं कि परिवार में निकट रिश्तेदारों के निधन के कारण बहुत बार शोक सभा में जाना हुआ है। जाने से पहले सोचती कि कोई हल्के कलर की या सिंपल सी साड़ी पहनूं, वही पहनकर जाती, लेकिन वहां जाने पर देखती हूँ कि महिलाएं आजकल फैंसी साड़ियां पहन के आ रही हैं। शोक सभा के दौरान बार बार मोबाइल देख रही हैं, आसपास बैठी महिलाओं से धीरे धीरे बातें कर रही हैं। ऐसा लगता है कि औपचारिकता निभाने के लिए ही वो वहां शामिल हुई हैं।
0: हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि रिश्तेदारी या आप

0: अपने मिलने वालों के गम और शोक के समय मैं जरूर शामिल होता हूँ शिष्टाचार के साथ। मैं उनकी शादी ब्याह या अन्य फंक्शंस पर शामिल हूँ या ना हो सकूँ किसी भी कारण से, लेकिन किसी भी कारण से मैं शोक में जरूर पहुँचता हूँ।
1: ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वही बात है कि दुख में आप शामिल हों तो जरूरी है। कई बार हम नहीं जा पाते हैं शादी ब्याह में, तो वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो, जब शोक के समय अगर आप नहीं जाते तो उन्हें जरूर याद रहता है कि कौन आया, किसने उनके मतलब ध्यान रखा, किससे उन किनसे उन बातें हुई, ये सारी बातें याद रह जाती मन में।
0: अब नेहा ये बातें हम थोड़ी देर के लिए विराम देते हैं इन
1: जी
0: बातों पर, और एक ब्रेक के बाद हम वापस अपने मुद्दे पर आएंगे और बहुत सारे विषयों पर बातें करेंगे। जी।

0: भारूड एक ऐसी कला है, कंटेम्प्रेरी है, वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को वो भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
1: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती,
0: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने। उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
1: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक, तो उनको लगा था कि भाई अब
0: बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
1: जी।
0: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
1: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे,
0: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
1: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से हुजूर।
6: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सखी सहेली और आज ममता जी हम कहानी पद्मश्री की ये सुनाते हैं और इसमें उन महिलाओं की बात करते हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। आज हम बात करने वाले हैं पैट्रिशिया मुखीम की जो समाज सेवा से जुड़ी हैं। मेघालय की पत्रकार, लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और उन्होंने उग्रवाद के खिलाफ उस समय आवाज उठाई जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और इसलिए पैट्रिशिया मुखीम की पहचान एक ऐसी सशक्त महिला के तौर पर होती है जिन्होंने 1970 से 1990 के दौरान मेघालय में फैली हिंसा और उग्रवाद का निडरता से सामना किया।
7: और ये भी बता दें कि ये वो दौर था जब मेघालय में उग्रवाद अपने चरम पर था। शाम होते ही सड़कें वीरान हो जाती, लोग घरों में बंद हो जाते, पूरे समाज में डर फैला हुआ था और तो और स्कूल बंद, व्यापार ठप और आम जनता कुछ कहने से भी डरती। हत्या, अपहरण, फिरौती, धमकी जैसी घटनाएं तो आम हो गई थी। पैट्रिशिया उन दिनों एक आम युवतियों के जैसे पढ़ना पसंद करती थी। उपन्यास

0: में वो खोई रहती थी और एक खुशहाल भविष्य का सपना देखा करती, जबकि माहौल वैसा नहीं था।
1: और आखिरकार पेट्रिशिया ने निर्णय लिया कि कुछ और अपने साथ कुछ 20-25 लोगों को वो लेकर सड़कों पर उन्होंने निकलना शुरू किया। ये डर के खिलाफ लड़ने की मुहिम थी, क्योंकि कोई निकलता ही नहीं था, तो उन्होंने ये लोग इससे आगे बढ़े इसलिए ऐसा किया। और बाद में वर्ष 1996 में उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम उन्होंने रखा शिलोंग वी केयर। और इस संगठन में वो लोगों को जागरूक करने का काम करने लगी। दुकानदारों से वो कहा करती कि शाम के समय भी दुकानें खुली रखें, लोगों को बाहर निकलने के लिए कहती और जिंदगी जीने की बातें करती उनसे।
0: और उन्होंने शांति मार्च निकाले, नुक्कड़ सभाएं की, नुक्कड़ नाटक किए और एक ही संदेश दिया कि हिंसा किसी समस्या का समाधान नहीं है। उनकी इतनी कोशिशों के बाद लोग भी जुड़ने लगे, क्योंकि जनता भी परेशान हो चुकी थी कैद कैद रहते हुए। पेट्रिशिया मुखिम के शांति मार्च में बच्चों से लेकर बड़ों तक हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने मिलकर नारे लगाए कि हमें तो उग्रवाद नहीं चाहिए, और ये एक बड़ी बात थी क्योंकि ये सभी चाहते थे, लेकिन सामूहिक रूप से इस तरह कहने का साहस पहले किसी में नहीं था।
1: बिल्कुल, और ये हुआ क्योंकि इस मामले में एक घटना ऐसी हुई जिसने मुख्य भूमिका निभाई। उग्रवादियों ने एक टेलीविजन की दुकान में जाकर विवाद किया और कुछ निर्दोषों को मार दिया। और इसके बाद पेट्रिशिया के संगठन ने एक सभा बुलाई और उसमें और भी लोग शामिल हुए। सभी उग्रवाद से परेशान हो चुके थे क्योंकि आर्थिक विकास को ठप्प करने में भी उग्रवादियों का बड़ा हाथ था। रोजगार, व्यवसाय, स्कूल, जीवन सब कुछ प्रभावित था। आखिरकार लोगों ने डर के खिलाफ कदम उठाया और इस आंदोलन में सरकार का भी उन्हें साथ मिला। तत्कालीन गृह मंत्री रॉबर्ट गार्नेट लिंगडो ने अपना सहयोग उन्हें दिया और उग्रवादियों की आर्थिक मदद किस तरह से रोकी जाए इसके लिए एक नियम बनाया। और जो भी व्यक्ति उग्रवादियों को फिरौती देता तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाती, तो लोगों ने
0: बिल्कुल।
1: फिरौती देना बंद कर दिया और उग्रवादियों को आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई। तो इसका असर यह हुआ कि वो आत्मसमर्पण करने लगे और धीरे धीरे पेट्रिशिया मुखीम की मुहिम को जीत हासिल होने लगी और शांति लौटने लगी।
0: 2015 में अदालत ने निर्देश दिया कि उग्रवादियों के बंद के आह्वान प्रेस विज्ञप्ति को प्रकाशित न किया जाए। इससे भी उनकी गतिविधियां प्रभावित हुई, उग्रवाद की घटनाएं कम से कम होने लगी। पेट्रिशिया मुखीम केवल यही नहीं रुकी, बल्कि वो समाज के सुधार को लेकर बहुत सारे अन्य कार्य भी करती रहीं, जैसे कि उन्होंने पीपल्स रैली अगेंस्ट करप्शन के जरिए जमीन से जुड़े विवाद का विरोध किया। उन्हें गिरफ्तार किया गया, फिर भी वो घबराई नहीं, जबकि उस समय वो अकेली महिला थी जिन्हें 45 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था।
1: जी, और पेट्रिशिया मुखीम ने ऑनलाइन लॉटरी के खिलाफ भी अभियान चलाया। मेघालय इकोनॉमिक डेवलपमेंट काउंसिल में भी राज्य के भविष्य के लिए उन्होंने काम किया। द शिलोंग टाइम्स की संपादक रह चुकी पेट्रिशिया मुखीम को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है, लेकिन साल 2000 में उन्हें भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
0: सामाजिक संघर्षों और कार्यों में पूरी तरह समर्पित पेट्रिशिया मुखीम निजी जीवन में अपने बीते को खोने के गहरे दर्द से जूझती अपने बेटे को खोने के दर्द से जूझती रही। आज भी समाज के लिए सक्रिय हैं। तकरीबन 17 बरस की उम्र में वो आज भी योग करती हैं, पहाड़ी रास्तों पर चलती हैं, पर्यावरण बचाने के लिए अभियान चलाती हैं, आदिवासी अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए लगातार अपनी बुलंद आवाज आज भी उठाती हैं। उनका मानना है कि अगर बदलाव लाना है तो एकजुट होना होगा, क्योंकि जब सब साथ खड़े होते हैं तभी बदलाव आता है।
1: और तकरीबन 70 वर्ष की पेट्रिशिया मुखीम हमें सिखाती है कि कभी कभी एक निडर आवाज भी लोगों को एकजुट करने में सहायता करती है। किसी एक का साहस हो तो सभी लोगों में वो साहस हो जाता है, उन्हें देखकर सब साहस करते हैं और समाज डर, हिंसा और अन्याय से आगे बढ़कर शांति और लोकतंत्र कायम कर सकता है।
0: तो इस बात से हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि बूंद बूंद से सागर बनता है। एक पेट्रिशिया का हाथ आगे बढ़ा और कारवां बढ़ता गया और उन्होंने विजय पाई, पद्मश्री सम्मान से उन्हें नवाजा गया।
1: जी,
0: अब गाना सुनते हैं ये।

0: हाँ तो नेहा, हमने शुरुआत में बताया था कि श्रोताओं से हमने ये शौक के बारे में पूछा था, लेकिन बहुत
1: जी
0: सारे श्रोता तो अभी लिख नहीं रहे। हमें लगता है हमारे श्रोताओं को विविध भारती सुनने के अलावा और कोई शौक नहीं, क्योंकि हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि शौक तो बहुत से थे, अब सिर्फ विविध भारती प्रोग्राम के ही सुन पा रहे हैं। उनमें से कोई प्रोग्राम मिस कर जाता हूँ, अब से 8 बजे तक अनवरत मोबाइल पर VBS के प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, ऑफिस का काम भी चलता रहेगा। भाई, विविध भारती सुनने का शौक तो सबसे उम्दा शौक है, इस शौक को आप कायम रखिए।

0: लेकिन इसके अलावा जब भी वक्त मिले इसके साथ साथ और भी शौक कर सकते हैं। विविध भारती सुनते हुए आप पढ़ाई लिखाई कर सकते
1: जी
0: हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, निटिंग कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, क्या
1: कुछ
0: क्या
1: भी
0: नहीं
1: कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। रेडियो के
0: कर
1: साथ सब चीजें कर की जा सकती है, ऐसा ही तो मतलब हमने शुरुआत से ऐसा ही तो सब
0: बिल्कुल
1: बड़े हुए हम सब,
0: सही बात
1: रेडियो
0: है।
1: सुनते सुनते सारे काम करते करते।
0: और रेडियो सुनते सुनते अगर हम काम करते हैं तो कल्पनाशीलता का विस्तार भी होता है,
1: हाँ
0: क्योंकि हम सोच रहे होते हैं, विविध भारती सुन रहे होते हैं, तो निश्चित रूप से एक दृश्य खींच रहे होते हैं उस समय।
1: और एक मेडिटेशन जैसा हो जाता है, एक समय के बाद में हमें सब सुनाई दे रहा होता है, फिर हम अपने काम में भी डूबे रहते हैं, लेकिन किसी ने रेडियो बंद कर दिया तो पता चलता है कि अरे हम सुन रहे थे। ऐसा लगता है ना कि आप अपने काम में डूबे हुए हैं तो बंद कर देते हैं, लेकिन ध्यान रहता है। हमारे एक साथी ने जरूर लिखा है कि उन्हें बागवानी का बहुत शौक है, इसके लिए मैं शनिवार रविवार को जरूर समय निकालती हूँ, पेड़ पौधों की गुड़ाई करना, कटाई छटाई करना या नए पौधे लगाना, और ये छुट्टी वाले दिन जरूर करती हूँ। मुझे गमलों में पेंटिंग करना, तरह तरह से क्यारियों को सजाना भी बहुत पसंद है, इसके लिए भी समय निकल ही जाता है, और रेडियो सुनना और विविध भारती पेज पर कमेंट करने के लिए काम से थोड़ा समय चुरा ही लेती हूँ। तो कितनी अच्छी तरह से वो अपना पूरा समय मैनेज कर रही है ना।
0: और बहुत सारे श्रोताओं ने और भी बातें लिखी। एक श्रोता ने लिखा है कि हमें कुकिंग का शौक है, खाना बनाने का शौक है, रेडियो सुनते सुनते हम खाना बना लिया करते हैं। और विविध भारती के शौक के बारे में और भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हमें तो विविध भारती सुनने का बहुत शौक है। और एक श्रोता ने कुछ अलग सी बात लिखी है, वो ये लिख रहे हैं कि आपने शोक के बारे में बात की थी और गाना सुनवाया था जुल्मी संग आंख लड़ी रे, तो क्या गाना सुना दिए जुल्मी संग आंख लड़ी? 1% चैनल पर आने वाले ऐसे लोग हैं जो किसी के दुख दर्द में जाते हैं और बढ़िया बढ़िया साड़ी भी पहनते होंगे, अपने घर की पुण्यतिथि कभी नहीं मनाते मगर दूसरों की उस दिन जन्मदिन जरूर मनाते हैं। एक प्रतिष्ठित चैनल पर होता है जो गाना सुनाते हैं, तो इनके लिए शायद ये विविध भारती के लिए इनकी बात है, तो
1: जी
0: इनको स्पष्ट कर दें कि आज कोई शोक का दिन नहीं है। ये
1: जी
0: तो हम एक शिष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि सखी सहेली ऐसा प्रोग्राम है नेहा जिसमें हम हर मुद्दे पर बात करते
1: जी
0: हैं, महिलाओं के बारे में बात करते हैं, जहां महिलाओं के आगे बढ़ने की बात हो, जहां उनके शिक्षा की बात होती है, उनकी कामयाबी की बात होती है, उनके करियर की बात होती है, और तमाम मुद्दे हैं, खेल है, पढ़ाई लिखाई,
1: जी
0: कुकिंग से लेकर हर मुद्दे पर हम बात करते हैं। तो इसी के तहत ये मुद्दा उठाया, तो जहां पर शिष्टाचार की बात है,
1: जी
0: तो
1: लेकिन ममता जी, एक बात तो ये भी हम कहना चाहेंगे इनसे कि शायद ये बहुत ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि जुल्मी संग आंख लड़ी गीत से तो हमारे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी,
0: बिल्कुल
1: और जब हमने शोक से संबंधित बातें की तो उसके अनुरूप ही गीत हमने सुनवाया, जिसे हमारे सभी श्रोताओं ने सुना है और उन्हें पता है कि असलियत क्या है। और
0: बिल्कुल
1: जिन्होंने नहीं सुना, हम तो कहेंगे इन श्रोता को कि 3 बजे रात में भी इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होता है, तो वो जरूर उसे सुने और उसके बाद ही कोई निर्णय लें, है ना।
0: और अब एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, इसके लिए मेरा रविवार फिक्स होता है, बहुत कुछ सीखा भी, जैसे कि धैर्य का गुण हमने सीखा। और एक श्रोता ने और लिखा है कि मुझे बागवानी का शौक है, मतलब बागवानी का शौक बहुत सारे लोगों
1: और
0: को है।
1: हमारे एक श्रोता ने लिखा कि हमको तो खाली समय में एडिटिंग का शौक है, मैं हमेशा 4 से 5 घंटे एडिटिंग करता हूँ, तो ये भी एक अच्छा शौक है। कुछ वो उससे कुछ उन्हें मिल रहा होगा, कुछ चीजें सीख रहे होंगे, कि एडिटिंग करना भी एक अपने आप में गुण है, और वो शौक के साथ साथ कभी कभी काम में भी बदल जाता है। अगर काम ही उनका शौक है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल, कुछ लोगों को दिन भर मोबाइल देखने का भी शौक होता है,
1: जी
0: तो
1: इस शौक से
0: इस
1: मुक्ति पाना
0: मुक्ति
1: जरूरी है।
0: पाए बच्चे,
1: जी
0: क्योंकि ये शौक बहुत खतरनाक होता है, इससे आपका वक्त बहुत सारा खा जाता है मोबाइल,
1: जी
0: और आप अपने जो शौक है उन्हें जान ही नहीं पाते। सबसे बड़ी बात तो ये है नेहा कि आपके शौक क्या है उन्हें
1: जी
0: पहचानिए, खास तौर से छोटे बच्चों के भीतर कई बार हम बहुत सारे हुनर देखते हैं लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती है, सही मार्गदर्शन नहीं मिलता है, तो वो जान नहीं पाते कि उनके शौक क्या है और विपरीत दिशा में अपने आगे बढ़ते हैं, करियर का चुनाव कर लेते हैं, जिसके लिए उन्हें परेशान भी होना पड़ता
1: जी
0: है।
1: और कई बार ऐसा होता है कि माता पिता कुछ बनना चाहते हैं और उनके बहुत सारे शौक होते हैं जो किसी वजह से पूरे नहीं हुए, तो उन्हें लगता है कि जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं उन्हें ये सिखाऊंगी, तो वो भी एक है। उसकी बजाय माता पिता को चाहिए कि खुद ही अपने शौक पूरे कर लें और
0: बिल्कुल
1: बच्चों को उनके शौक पूरे करने दें, है ना।
0: और शौक पूरे करने की कोई उम्र नहीं होती
1: जी
0: है। कई बार लोग ये कहते रहते हैं कि भाई हमें तो दफ्तर जाने के साथ हमें टाइम नहीं मिलता है, हम
1: जी
0: ये नहीं कर पाते, तो भाई उसके साथ एडजस्टमेंट हो जाता है, आप सामंजस्य बिठा सकते हैं

0: हॉल का टिकट होता है, वो दिखाया, कहा कि भाई मैं तो स्टूडेंट ही हूँ। तब वो बड़े मजे से वो बात बताई थी कि मुझे रोक दिया, मैं क्या करूँ। और बाद में उन्होंने अपनी बेटियों को और हम सभी को ये बातें सुनाई।
1: और एक बात और बताएं नेहा
0: जी
1: आपको, जो जानी मानी गायिका है छाया गांगुली,
0: जी
1: विविध भारती में जिनका सानिध्य हमें मिला, हम गौरव का एहसास करते हैं जब छाया जी का नाम लेते हैं, और उनकी जो गजल है रात भर आपकी याद आती रहे, गमन फिल्म
0: जी
1: की गजल, जिसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया था। छाया जी बताती हैं कि वो रिटायरमेंट के कई साल बाद उर्दू सीखना शुरू किया, उनको उर्दू सीखने का शौक था,
0: जी
1: तलफ्फुज़ का बड़ा ख्याल रखती है वो
0: जी
1: कि कहीं कोई उच्चारण गलत ना हो,
0: हाँ
1: तो इसके लिए उन्होंने उर्दू सीखना शुरू किया, और एक साल नहीं कई साल उन्होंने उर्दू सीखा, और जब भी कहीं किसी शब्द पर अटकती तो वो फोन करके पूछती थी हम सबसे।
0: जी
1: तो ये बड़ी बात है, हमने उनका नाम इसलिए यहाँ पर लिया कि वो एक मार्गदर्शक है हम सबके लिए,
0: जी
1: लेकिन वो एक उम्र के इस खास जगह पर आकर सीख रही है, तो सीखने की कोई उम्र
0: उम्र नहीं
1: नहीं
0: होती,
1: होती है, और गाना सुनवाने के लिए भी
0: कोई समय नहीं होता।
1: तो सुनते हैं गाना।
0: जब सदा संग

0: नेहा, ये बरसात का मौसम जितना लुभाता है उतना ही सताता भी है, क्योंकि बारिश के मौसम में अलग अलग तरह के कीड़े आसपास होते हैं, नमी बहुत ज्यादा होती है और उसके कारण पता ही नहीं चलता कि कब कहाँ किसकी किस तरह के कीड़े ने अपनी जगह बना ली है, और छोटे छोटे बारीक मच्छर जैसे कुछ कीड़े होते हैं।
1: जी
0: आप नॉर्मल कहीं बैठे हों जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं भी हैं और पता चलता है, आप दिखाई भी नहीं पड़ते हैं, एकदम कण एक कण की तरह होते हैं और काट के चले जाते हैं, बहुत देर तक बदन खुजलाता रहता है
1: बिल्कुल।
0: ना?
1: और पानी भी भर जाता है बरसात के मौसम में कई जगह, तो कई हल्के जहरीले कीड़े भी अपने बिलों से बाहर निकलते हैं और उनके काटने की संभावना भी बढ़ती है। अगर इस तरह के कोई कीड़े आपको काटते हैं, जहां भी मतलब अगर सूजन दिख रही है, ऐसा कुछ दिख रहा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना तो उचित है सबसे ज्यादा। और जहां कीड़े ने काटा हो वहां पर बार बार आप खुजलाएं नहीं, कि खुजली तो होती है पर खुजलाएं नहीं, या तेल चूना या कोई भी दवाई ऐसी हम लगा लेते हैं जो सामने दिखती है, कभी कभी मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन होता है, वो लगा लेते हैं। तो ये सब ना करके पानी और एंटीसेप्टिक साबुन से पहले साफ कर लीजिए, और अगर काटने के बाद आपको सूजन आ रही है या चक्कर जैसा लग रहा है, तेज जलन हो रही है, सांस लेने में कभी कभी तकलीफ भी होती है, ऐसा कुछ हो

0: तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, नहीं तो डॉक्टर को फोन करके आप सलाह ले सकते हैं बाकी मामलों में।
1: बिल्कुल सही कह रही। हालांकि कई बार कुछ छोटे कीड़ों के काटने पर लालिमा जैसी होती है, हल्की जलन भी महसूस होती है, तो इसे पानी से साफ करें और कुछ देर खुजलाने से बचने पर भी वो ठीक हो जाता है। उसे खुजलाएं नहीं बल्कि उसको रब करें, हल्के
0: जी
1: हाथ से रब करें तो भी आराम मिलता है। ऐसे में बेकिंग सोडा के पानी से धोना ठीक रहता है, या फिर डिटॉल वगैरह उस पर
0: जी
1: लगा देना धोने के बाद ठीक रहता है। और नीम का तेल लगाने की सलाह दी जाती है। हल्की सूजन के लिए बर्फ की सिकाई भी कारगर होती है, लेकिन इस बात के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है,
0: जी
1: क्योंकि कीड़े काटते हैं आपको पता नहीं चलता है कि कोई जहरीला कीड़ा तो नहीं है।
0: जी और बारिश में कीड़ों से बचाव के लिए आप नीम के तेल या कपूर जैसे सुगंधित चीजों को घर के किनारों में उपयोग कर सकते हैं, तो कीड़े ही कम पनपेंगे। या घर की साफ सफाई करते रहने से भी, नमी को दूर करते रहने से भी कीड़े नहीं बसेंगे। बिस्तर को झाड़ के सोइए, जो कपड़े हमने कहीं लगा दिए हैं या अलमारी में रखे तो भी एक बार झाड़ के पहने, जूते चप्पल भी झाड़ कर पहनिए, कभी कभी छोटे छोटे कीड़े उसमें छुपे होते हैं, तो इससे भी हम बच सकते हैं। और हमारे एक साथी ने बताया कि अगर कहीं काटता है, कीड़ा वगैरह काटता है तो उस जगह को खुजलाए नहीं, अगर अगर आपको कहीं डंक वगैरह अगर दिखता है तो भी आप उसे बिल्कुल भी ना दिखलाएं, मतलब कुछ करें ना उसे।
1: बिल्कुल। और अब सुनिए गाना, प्रोग्राम का आखिरी गाना।

0: अब घड़ी की ओर जरा देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम कुछ बोले बतियाएं या
1: जी
0: गाना सुनवाएं।
1: लेते हैं सखी और सखाओं से इजाजत।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले रहे थे। ये कार्यक्रम आप पुनः सुन पाएंगे समाचार के बाद। आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर। अभी आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: विशाल शर्मा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुआ मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। इस दौरान 25 दिनों में 19 बैठकें हुई। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच केवल 19% और राज्यसभा में 39.17% ही कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा हुआ। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि जब सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी तब विपक्ष ने सदन में चर्चा नहीं होने दी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्षी सांसदों का आचरण लोकतंत्र, विशेषकर संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राजस्थान मंत्रिमंडल ने आज राजस्थान समान नागरिक संहिता विधेयक 2026 के मसौदे सहित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण और लिव इन रिलेशनशिप से संबंधित राज्य भर में एक समान प्रावधान लागू करना है। आदिवासी समुदायों के रीति रिवाजों और परंपराओं को मसौदा नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा है। राज्य सरकार ने अवैध और अंधाधुंध वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए कड़े प्रावधानों वाला राजस्थान वृक्ष संरक्षण विधेयक 2026 भी पेश करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में विशेष अलंकरण समारोह में वर्ष 2024 और 2025 के लिए 100 से अधिक कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप और पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार विजेता आधुनिक भारत की प्रतिभा और निष्ठा के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि देश की संगीत, नृत्य और लोक रंगमंच की कई विधाएं हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि आज के पुरस्कार विजेताओं में ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने विदेश में रहकर भारत की कलाओं का प्रचार किया। गृहमंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री अमित शाह ने कहा कि यह अभियान देशभक्ति की भावना को मजबूत कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि राष्ट्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन कर रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर राष्ट्रीय ध्वज के साथ तस्वीर साझा की। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस अभ्यास में समारोह की भव्यता, कुशल समन्वय और देशभक्ति की गहरी भावना को प्रदर्शित किया गया। उधर अमेरिका में विभिन्न राज्य 15 अगस्त को भारत दिवस के रूप में मनाने के लिए विशेष आदेश जारी कर रहे हैं। इसके तहत भारत की स्वाधीनता, समृद्ध विरासत और विविधता के साथ साथ अमेरिकी ताने बाने में भारतीय अमेरिकी समुदाय के बढ़ते योगदान को सम्मानित किया जाएगा। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और ओडिशा में आज रेड अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, केरलम, माहे, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों तक जम्मू कश्मीर, राजस्थान, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में भी आंधी चलने की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में शाम के समय हल्की बारिश की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए गए थे। श्रोताओं, आकाशवाणी का ये हाफ लॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।

कनेक्शन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब आइए श्रोताओं, हम सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम पुनः, रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम
0: नमस्ते
1: जी, मैं त्रिपुरा से संगीता देवनाथ बोल रही हूँ
0: जी, बताइए कैसी हैं आप।
1: मैं अच्छी हूँ मैम, आज पहली बार आपसे बात करने का मौका मिला मैम।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। त्रिपुरा में कहाँ रहती हैं आप।
1: मैं त्रिपुरा कैलाशहर में रहती हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट है ऊनकोटी त्रिपुरा।
0: अरे वाह, कैसा है आपका शहर बताइए इसके बारे में। हमें हमारे सुनने वाले जानना चाहते हैं कि त्रिपुरा शहर की क्या
1: जी
0: विशेषता है।
1: त्रिपुरा तो पहाड़ी इलाका है मैम, बहुत ही छोटा सा शहर है, तो यहाँ देखने के लिए ऊनकोटी टेम्पल भी है
0: हाँ
1: और बहुत सारे लोग भी देखने के लिए आती है यहाँ, और त्रिपुरेश्वरी टेम्पल है।
0: अरे वाह, फिर तो खूब पर्यटक आते होंगे ना।
1: जी बहुत सारा।
0: तो वहाँ के भोजन की कोई विशेषता, जब इतने पर्यटक आते हैं तो कुछ खास मिलता होगा खाने के लिए पहनने के लिए, बता सकती हैं आप।
1: जी यह खाने के लिए तो मशहूर है रसगुल्ला।
0: रसगुल्ला।
1: जी
0: अरे वाह, चलिए कौन सा गाना
1: तो
0: सुनेंगे
1: मैम
0: आप।
1: मुझे गाना सुना दीजिए, लता दीदी की आवाज में, जुर्माना फिल्म है और गाने का बोल है सावन के झूले पर।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: वालेकुम सलाम
1: जी मैडम, हम कश्मीर से बोल रहा हूँ, हिलाल अहमद
0: जी। कैसे हैं आप?
1: बस बहुत बढ़िया, आप कैसे हो?
0: हम भी ठीक हैं। ये बताइए, वहाँ का प्रकृति का वर्णन कीजिए
1: जी। मैडम यहाँ तो बहुत बढ़िया मौसम है, आज इस मौसम में तो बहुत मजा है यहाँ। आगे भी जो मौसम आने वाला है तो वो भी बहुत बढ़िया लगता है, मगर थोड़ा सर्दी फिर आते हैं उस मौसम में।
0: हाँ, ठंड तेज हो जाती है ना,
1: हाँ ठंड तेज हो जाती है तो बहुत मुश्किलात भी होती है उस वक्त।
0: तो जो कश्मीर है उसको तो हम उसकी अद्भुत जो प्राकृतिक सुंदरता के कारण जानते हैं, धरती का स्वर्ग कहा जाता है। आपके वहाँ बहुत खास पारंपरिक व्यंजन भी बनाते होंगे, वो व्यंजन क्या क्या होते हैं? क्योंकि दुनिया भर में उन व्यंजनों के बारे में चर्चा तो होती है, लेकिन वो कैसे बनते हैं, क्या स्वाद होता है, थोड़ा सा एक व्यंजन के बारे में बताइए ना।
1: वो है ना वाजवान है।
0: वाजवान बनता है ना?
1: हाँ वाजवान, उसमें तो बहुत वैरायटी बनते हैं, तकरीबन 10-12 वैरायटी बनते हैं, बहुत बढ़िया बनते हैं वो।
0: अच्छा, तो फिर कावा कैसे बनता होगा? वो तो बादाम और केसर और इलायची से बनता है।
1: हाँ उसमें इलायची भी डालते हैं, वो है ना मतलब रोंग, कश्मीरी रोंग कहते हैं उसको, वो भी उससे बहुत बढ़िया वो बनते हैं।
0: तो अभी आप
1: वो
0: कावा पीते हैं?
1: कभी कभी पीते हैं तो वही तफ वगैरह बुखार, उस पे भी हम वो यूज करते हैं तो उससे थोड़ा राहत मिलते हैं।
0: अच्छा, तो रूटीन का खाना क्या है आपका?
1: रूटीन का खाना है चावल 2 टाइम, और दिन में 2 चाय हम बनाते हैं, लिप्टन चाय और वो है ना नमक चाय।
0: अच्छा, जिसे नून चाय कहते हैं।
1: हाँ नून चाय।
0: नून चाय,
1: हाँ
0: ये क्या गुलाबी से रंग की कोई चाय होती है?
1: हाँ ये गुलाबी बनते हैं, इससे आज बहुत पुराने वक्त में, ये मतलब आज से पहले कुछ साल पहले, ये हम समावार में बनाते हैं, कश्मीरी समावार है ना उसमें बनाते हैं, तो ये बहुत बड़ा मजा होता है इसको। तो वो इंडक्शन हीटर है, बिजली पे जो चलने वाले उन पे बनाते तो ऐसा नहीं होते ये भी।
0: पहले जैसा स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आया करता था ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कश्मीर के पारंपरिक व्यंजन कैसे होते हैं या वहाँ का रहन सहन कैसा है?
1: हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए, तो आपके प्रोग्राम भी हम सुनते हैं सुबह से शाम तक,
0: बिल्कुल
1: बढ़िया
0: सुनते हैं,
1: मजा आता है।
0: बिल्कुल। बताइए, गाना बताइए।
1: मैडम हम आज सिर्फ तुम फिल्म का गाना है, 5-6 सुर में गाते हैं।
0: चलिए

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, अपना नाम बताइए।
1: मैं गजानन नादरे बोल रहा हूँ जी, गिरगांव तहसील बसमत जिला हिंगोली महाराष्ट्र से।
0: स्वागत है आपका गजानन जी, कैसे हैं?
1: बस बिल्कुल ठीक ठाक है, ऊपर वाले की दुआ है।
0: बिल्कुल, तो बताइए ना अपने गांव के बारे में कुछ खास जो हम लोगों को नहीं पता है। कैसा है आपका गांव, कितनी आबादी है, क्या
1: गांव
0: खासियत
1: में
0: है?
1: कैसा है, खेती किसानी होती है दीदी? हाँ
0: सभी लोग खेती किसानी करते हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: अच्छा, तो पानी की व्यवस्था वगैरह, बिजली वगैरह सब तरीके से आती है आपके यहाँ अच्छे से?
1: सभी सभी व्यवस्था है।
0: और मौसम कैसा रहता है, बदलता है या ये गर्मी का ही मौसम रहता है?
1: मौसम बदलता रहता है ना, अभी तो कैसा है बारिश का मौसम है, मगर बारिश उतनी हुई नहीं अभी तक, मगर फसल के लायक है।
0: अच्छा, फसल के लायक तो हो गई है ना, फसल जो आपकी खराब नहीं होगी ना।
1: नहीं,
0: क्या
1: अच्छी
0: फसल बोई
1: रहती है।
0: आपने अभी खेत में?
1: अभी तो कैसा है, इन दिनों सोयाबीन और हल्दी की फसल रहती है,
0: फिर
1: और साल भर रहने की फसल तो गन्ने की है, केले की है।
0: अच्छा, मतलब सोयाबीन और हल्दी की फसल कब तक रहेगी, कब इसकी हो जाएगी छटाई?
1: वो जून से लगभग नवंबर तक चलती है, चार
0: ठीक है,
1: महीने की रहती है दीदी, 4 महीने में उसकी कटाई होती है सोयाबीन। और सोयाबीन निकलने के बाद गेहूँ और चने की भी कर सकती है उस जगह पर, कई
0: अच्छा
1: कई किसान करते हैं वैसी भी खेती।
0: अच्छा यानी बारहो मासी कुछ ना कुछ खेत
1: हाँ
0: में डाला ही जाता
1: कैसा है,
0: है।
1: पानी की व्यवस्था है तो हर महीने में मौसम में आता है सब
0: हाँ,
1: फसल।
0: ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब खेत जो है खाली नहीं रहते हैं ना कोई फसल रहती ही है।
1: गेहूँ की निकलने के बाद थोड़ी जमीन की अच्छी तरह से अगले साल के लिए मरम्मत करने के लिए 4 महीने ठीक रहती है।

0: बुक करेंगे।
1: अच्छा चलिए, तो आप अकेले कर रहे हैं, आपके साथ कौन कौन करते हैं, घर के अन्य सदस्य कौन कौन है जो आपकी खेती बाड़ी में सहायता करते हैं?
0: घर में है ना, मैं भी हूँ, भाई है और मेरी पत्नी भी है।
1: हाँ सब मिलकर करते हैं। और बाहर से भी कुछ लोग रखे हैं आपने या आप ही पर्याप्त होते हैं?
0: मजदूर भी रहते दीदी, उतना पैसा है घर के आदमी को संभालने में ज्यादा तकलीफ होती।
1: सही कह रहे हो, मजदूरों को रखना ही पड़ता होगा ना, कुछ काम ऐसे हैं जो वो ही कर पाते हैं।
0: हाँ कैसा है, जल्दी से जल्दी कई कई बार उनकी निगरानी करनी पड़ती है।
1: हाँ बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं हमारे किसान भाइयों के प्रति है जो अपने खेत में रात दिन लगे रहते हैं हम लोगों को अन्न दाना देने के लिए। कौन सा गाना सुनवाएं आपको? तो
0: लेकिन फिल्म है उपहार और गाने के बोले मैं एक राजा तू एक
1: एक रानी है, चलिए सुनते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: अनिल भाई बोरेली मुंबई से बात कर रहा हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: अरे नमस्कार नमस्कार मेरी बहन, क्या बात है
0: भाई।
1: आपको 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं।
0: अरे क्या बात है, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उस दिन 1947 में भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह आजादी मिली थी।
1: और 9 अगस्त क्रांति दिन था, छोड़ो भारत आंदोलन।
0: बताइए आप कैसे लेते हैं इस बात को, क्या महसूस करते हैं स्वतंत्रता दिवस पर?
1: स्वतंत्रता दिवस पर में मेरे बहुत से प्रोग्राम होते हैं हमारे सोसाइटी में, झंडा वंदन किया जाता है, इधर गान होते हैं,
0: देश प्रेम के गान होते हैं ना?
1: हाँ, और मैं भी उसमें शामिल हो जाऊँ।
0: आप भी गाते हैं देशगान?
1: जी जी।
0: कौन सा गाना गाते हैं वहाँ पर?
1: मराठी गाना।
0: बताइए का की
1: जय हो स्तुते, जय हो स्तुते श्री महन मंगले वास्पदे शुभ दे स्वतंत्र से भगवती स्वामहम यशोयुता वंदे, यशोयुता वंदे।
0: बहुत सुंदर।
1: और एक गाना है, ने मजसी ने परत मातृभूमि ला सागरा प्राण।

0: मरला तड़मला सागरा सागरा।
1: बहुत अच्छा।
0: मुझे जो गाना सुनने की इच्छा है वो है ये मेरा इंडिया, आई लव माई इंडिया, वतन मेरा इंडिया, सजन मेरा इंडिया। कविता कृष्णमूर्ति, शंकर महादेवन और बाल कलाकारों ने गाया है
1: जी।
0: उनका नाम है परदेश। ये गाना राग बैरागी पर आधारित है।
1: अच्छा, राग बैरागी पर आधारित ये गाना है। बहुत अच्छा लगा आपने इसको शास्त्रीय संगीत की जो राग है उस पर भी बताया कि किस राग पर आधारित गीत है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये देश प्रेम गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी हेलो फरमाइश।
0: नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सोनितपुर असम रंगापरा से अमल बसुमतारी बोल रहा हूँ मैम।
0: अच्छा ये बताइए, अभी आसाम में जब हम देख रहे थे काफी अतिवृष्टि हुई है।
1: ये बारिश हुई थी, ये शिव सागर में हुई थी, जोरहाट में हुई थी।

0: नाजिरा, गोलाघाट, चराइदेव, असम में हुआ था ऐसे बार, बहुत लोगों की जान भी चले गई है और बहुत नागालैंड में बादल फटने की वजह से हुआ ये
1: जी
0: कहानी,
1: जी
0: इसके वजह से हुआ था ये। और हमारी सोनितपुर में ऐसा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा थोड़ा ऊंचा जगह है इसलिए, और
1: अच्छा
0: आज भी बहुत काफी धूप दे रहे हैं। हमारे
1: हाँ
0: यहाँ तो बारिश इतनी जोर से नहीं देता है, बारिश आते है तो ऐसे हल्के से बारिश आते है।
1: हाँ और अब कैसा है वहाँ माहौल?
0: यहाँ तो ठीक ठाक चल रहा है, फिर भी गर्मी ज्यादा चल रहा है, लगभग इसे 40 डिग्री तक जाता है हमारे यहाँ गर्मी।
1: बहुत सही कहा
0: और
1: आपने।
0: कभी कभी रात को बारिश भी होता है, रात पे थोड़ा राहत मिलता है, ठंडा होता है, और दिन भर ज्यादा गर्मी होता है।
1: जी तो एक बात बताइए, आप क्या करते हैं वहाँ पर आसाम में अमल जी?
0: असम में तो हम खेत के साथ जुड़ते हो और चाय का बगान के साथ जुड़ते हो और धान का खेती है हमारा, धान का खेती से जुड़ते हो।
1: अरे वाह, असम की चाय तो सबसे प्रसिद्ध है ना, कितनी
0: जी
1: स्वादिष्ट
0: जी
1: चाय होती है। आप वहाँ काम करते हैं है ना, आपके खेत में चाय की
0: हमारे
1: खेती होती
0: असम
1: है?
0: के सबसे ज्यादा सोनितपुर में ज्यादा फेमस है, जैसे का मोहन टी बगान, इसको ही ज्यादा जानते हैं, इसमें
1: जी
0: ज्यादा फेमस है ये। और
1: जी
0: हमारे इस ग्राम क्षेत्र में भी है, सबके घर घर में चाय का बगान देखने के लिए मिल जाता है।
1: बहुत अच्छा लगता है जब हम इसकी पिक्चर्स देखते हैं तो चाय के बागान इतने अच्छे लगते हैं, बहुत अट्रैक्ट करते हैं हम लोगों को, तो वाकई धन्यवाद देते हैं वहाँ के किसानों को।
0: जी
1: तो देखिए स्वतंत्रता दिवस आ रहा है और आप भी शायद देशभक्ति गीत सुनना चाहते हैं इस कार्यक्रम में।
0: जी जी जी वीर जारा फिल्म का है, ऐसा देश है मेरा गाना को सुनना है और इतना रहा इनकी आवाज में।
1: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हेलो मैम, राधे राधे। परिधि राजपूत बोल रही हूँ, बैरची जिला भोपाल से। हाँ
0: ये आपका गांव है?
1: नो मैम, शहर ही है। हाँ
0: अच्छा, आपका नाम बड़ा प्यारा है, परिधि।
1: थैंक यू मैम।
0: किसने रखा ये नाम?
1: मैम मेरी मम्मी ने और पापा ने रखा है। मैम
0: क्या सोच के रखा होगा?
1: पता नहीं है वो उन्होंने क्या सोच के रखा है, पता नहीं। मेरे को तो बस यही पता है कि मेरी मम्मी पापा ने रखा है।
0: अच्छा, क्या मतलब होता है परिधि का?
1: मैम गोल चक्र होता है।
0: अच्छा, उसे परिधि कहते हैं। तो क्या करती हैं आप परिधि?
1: मैं पढ़ाई करती हूँ, 8th क्लास में हूँ।
0: 8th क्लास में हैं आप?
1: हाँ
0: अभी
1: मैम।
0: तो बहुत छोटी हैं। आप क्या हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनती हैं विविध भारती के?
1: हाँ मैम, मैं बिल्कुल सुनती हूँ। होमवर्क करते हैं ना, जब भी सुन लेती हूँ, टाइम निकाल के सुनती हूँ।
0: आपके घर में और कौन सुनता है ये कार्यक्रम?
1: मैम मेरे पापा जी भी सुनते हैं और मैं भी सुनती हूँ उनके साथ साथ।
0: क्या बात है, बचपन से आप रेडियो सुनना चाहती हैं। तो आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? क्या इसी लाइन में आना चाहती हैं?
1: हाँ मैम बिल्कुल, मैं आना चाहती हूँ।
0: कैसे आएंगी बताइए, क्या लगता है आपको रेडियो की दुनिया में कैसे पहुंचा जा सकता है?
1: मैम अभी तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं आगे बड़ी हो के जरूर समझूंगी क्या क्या करना पड़ता है इसको आने में।
0: तो मुझे
1: हाँ
0: एक बात
1: मैम,
0: बताइए, आपने गाना कौन सा पसंद किया है?
1: देशभक्ति सॉन्ग सुना दीजिएगा मैम आप तो, कर्मा
0: कौन सा?
1: फिल्म का।
0: हाँ, तो मुझे एक बात बताइए, आप इतनी छोटी सी हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि देश प्रेम का मतलब क्या होता है तो क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे स्कूल में? आपने किसी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है?
1: मैंने एक मोबाइल में एक स्पीच निकाली तो मैं उसको पढ़ना चाहती हूँ। देश का ही मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत कर लेते हैं।
0: तो हमारे भीतर देश प्रेम ऐसे होना चाहिए कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें। जब हम
1: हाँ
0: जहाँ
1: मैम,
0: रहते हैं वहाँ हम अपने देश के प्रति ईमानदार हों, प्रकृति के प्रति ईमानदार हों। हमारा जो व्यक्तित्व है वो ईमानदारी होनी चाहिए
1: हाँ मैम
0: हमारा।
1: बिल्कुल, ईमानदारी रहना चाहिए और सब
0: हाँ,
1: लोगों को।
0: सबसे बड़ी बात ये है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतनी प्यारी सी छोटी सी उम्र में आप विविध भारती सुनती हैं अपने पिता के साथ। हमें भी अपना
1: हाँ
0: बचपन
1: मैम,
0: याद हो आया जब हम रेडियो सुना करते थे अपने पिता के साथ।
1: हाँ मैम,
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा देशभक्ति गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से, नाम बताइए अपना।
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
0: कैसे हैं प्रेम जी आप?
1: बहुत अच्छा हूँ, और आपसे बात करते हुए मुझे बहुत घबराहट हो रही है अभी।
0: कोई इंटरव्यू थोड़ी दे रहे हैं जो आपको घबराहट हो रही है?
1: विविध भारती में जब कॉल लगता है ना तो ऐसा ही हाल होता है, ऐसा भी सोचा
0: अरे
1: होगा।
0: मुझे तो लगा आप कहेंगे कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपने एक नई बात कह दी कि मुझे घबराहट हो
1: जी
0: रही है।
1: अच्छा तो लग रहा है, लेकिन क्या होता है जब कॉल कनेक्ट होता है ना एकदम से, तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है।
0: धड़कन तेज हो गई, अब कुछ थमी?
1: हाँ बिल्कुल नॉर्मल अब हो गया हूँ मैं। और आपको बताऊँ, काफी अच्छा मौसम है यहाँ पर, अभी रुक रुक के तेज बारिश हो रही है।
0: अच्छा चलिए, मौसम अच्छा हो गया और क्या चाहिए ना,
1: जी
0: बारिश होना
1: हाँ,
0: बहुत जरूरी है।
1: और
0: चलिए
1: अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो बाबा महाकालेश्वर बाबा के यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं।
0: सबसे बड़ी बात है, तो जो महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है आपके वहाँ, उसके लिए तो लोग बड़ी तादाद में आते होंगे, है ना?
1: जी बिल्कुल, कांवड़ यात्री आ रहे हैं और सभी के लिए मतलब काफी अच्छी सुविधा की हुई है यहाँ पर। जी आने जाने के लिए रास्ते काफी चौड़े हैं, भंडारे जगह जगह लगाए हुए हैं, और रहने के लिए निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है सभी यात्रियों को।
0: क्या बात है, क्या शानदार माहौल हो रहा होगा। तो ये जो
1: जी
0: महाकाल
1: हाँ
0: मंदिर है आपके वहाँ, इसकी विशेषता क्या है?
1: जी, महाकालेश्वर बाबा के मंदिर में जब एक बार किसी की अर्जी लग जाती है तो उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है।
0: अच्छा, और कहते भी है ना कि ये यहाँ पर उत्तर या दक्षिण मुखी शिवलिंग है,
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: ये इसकी खास विशेषता बताई गई है जैसा
1: हाँ जी
0: हमने।
1: खास विशेषता है
0: तो
1: जी।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा कि आपके उज्जैन में जो है अभी बहुत सारे पर्यटक आ रहे हैं, भक्तगण आ रहे हैं और सावन मना रहे हैं।
1: जी
0: तो 15 अगस्त भी करीब आ रहा है, स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल करीब है। आप युवा
1: जी
0: हैं, क्या सोचते हैं आज के दौर में युवाओं के लिए देश प्रेम को दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक दूसरे से सद्भाव से रहे, प्रेम से रहे, और कहीं पर भी मतलब ऐसे कचरा कूटा ना फेंके और एक दूसरे के लिए प्रेम की भावना रखे।
0: क्या बात है, आपने तो इंटरव्यू का बिल्कुल सही जवाब दे दिया है जो आपसे सवाल
1: जी
0: पूछा गया, बहुत अच्छी बात आपने कही।
1: फिल्म
0: कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: का नाम है हेलो ब्रदर, और गाने के बोले हटा सावन की घटा।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ही।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम, आपका स्वागत
1: हाँ
0: है।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार
1: आप मंदाकिनी जी बोल रही है? पीयूष
0: जी। हाँ, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मेहता सूरत से। बस
0: स्वागत है आपका पीयूष जी। कैसे हैं आप?
1: बस मजे में, स्थापना
0: आप तो विविध भारती के बहुत पुराने और पक्के श्रोता हैं हमारे,
1: के समय से। तो
0: तब से आप सुनते हैं?
1: पहले शुरू से 2-4 साल वो बड़े लोग बजाते थे और सुनता था, बाद में 12 साल की उम्र से मैं ही ट्यून करने लगा था।
0: क्या बात है। तो बताइए मुझे पीयूष जी, 12 साल की उम्र में जब आप विविध भारती सुना करते थे, फिर आप युवा हुए, फिर आपने धीरे धीरे इस कार्यक्रम को सुना, और आज जब आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, तब और अब के कार्यक्रमों में क्या फर्क नजर आता है आपको?
1: प्रसारण की प्रक्रिया में फर्क है। पहले 2 स्टेशन से लाइव होते थे, एक ही स्क्रिप्ट अलग अलग अनाउंसर पढ़ते थे, गाने बजते थे, मुंबई और मद्रास जो आज चेन्नई है वो। बाद में और टेप जाने शुरू हुए।
0: हाँ, वो तो आंतरिक प्रक्रिया है। आप एज ए लिसनर, एक श्रोता के रूप में क्या अंतर महसूस करते हैं? मतलब उस वक्त जिस तरह से प्रोग्राम पेश किए जाते थे, आज जिस तरह से पेश किए जाते हैं, क्या अंतर लगता है आपको?
1: जमाने के साथ विविध भारती कदम मिला के चल रही है।
0: मतलब दौड़ रही है एक तरह से। और
1: बिल्कुल
0: आप मुझे ये भी बताइए, जब हम अपने कार्यक्रम देते हैं और बीच में जब हम वाद्य धुन बजाते हैं, तो आप उसका भी जिक्र करते हैं फेसबुक पेज पर कि भाई ये वाद्य धुन बजाई जा रही है, ये गुण आप में कैसे है? क्या क्या सीखा है आपने? कौन से वाद्य यंत्र बजाते हैं आप?
1: मैं थोड़ा बहुत मांसर्गन बजा लेता हूँ।
0: आप बजाइए, अगर सुनाना चाहते हैं तो सुनाइए। अच्छा,
1: एक ही
0: चलिए,
1: रास्ता गाने का, फिल्म का, सावरे सलोने दिन बहार के।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: क्या बात है, अभी आपकी उम्र कितनी है ये बताइए?
1: मेरी 77 अभी पूरे होने वाले हैं
0: सेवेंटी
1: सितंबर में।
0: सेवन इस उम्र में भी आप ये माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं ना,
1: कुछ हद तक बजा लेता हूँ,
0: बहुत
1: मैं ऐसा
0: अच्छा।
1: नहीं बोलता कि मैं संपूर्ण कलाकार हूँ
0: लेकिन
1: एकदम।
0: इतने लंबे समय तक इस शौक को बनाए रखना और आज भी बजाना, हमें सुनाना, ये बहुत बड़ी बात है। कौन सा गाना सुनेंगे बताइए?
1: प्रेम पत्र का गाना, ये मेरे अंधेरे उजाले पे होते, संदीप
0: अरे बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप तो, आपकी पसंद का गीत सुनते हैं।
1: चौधरी का संगीत है, और
0: सलील
1: विमल
0: साहब
1: रॉय की फिल्म और शशि कपूर और साधना की अदाकारी है।
0: जी, आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते।
1: मंदाकिनी जी, मैं जोधपुर से गिरधारी लाल विश्वकर्मा बोल रहा हूँ।
0: नमस्कार गिरधारी जी। नमस्कार, जोधपुर राजस्थान से बोल रहे हैं, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा है। मौसम भी अच्छा है, बरसात का मौसम चल रहा है। थोड़ी
0: अच्छा, बरसात हो रही है राजस्थान में, खासतौर से जोधपुर में।
1: थोड़ी हो रही है, कल भी थी, आज भी थोड़ा सा मौसम बना हुआ है। अच्छा
0: चलिए, तो स्वतंत्रता दिवस बिल्कुल ही नजदीक है, और ऐसे में अगर मौसम अच्छा होगा तो हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा माहौल तैयार हो जाएगा,
1: हाँ,
0: क्योंकि वो
1: बहुत अच्छा।
0: स्टेडियम जाते हैं, परेड करते हैं, देशगान गाते हैं। आप क्या
1: जी
0: करते हैं
1: बिल्कुल जी,
0: गिरधारी जी?
1: मैं वैसे पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ और म्यूजिक का शौक है। मेरा काम के साथ साथ रेडियो चलता रहता है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे रेडियो के बिना तो हम लोग काम ही नहीं कर सकते, तो हमारे साथ पास में जब हम काम करते हैं तो पास में रेडियो चलना बहुत जरूरी हो जाता है। हमारे को काम करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ जाती है और उसमें मन लगता है काम करने में।
0: तो रेडियो में कौन सा स्टेशन ट्यून करते हैं?
1: विविध भारती और रेडियो सलून, सॉरी हमारे स्थानीय जोधपुर।
0: संगीत का भी शौक है, बताइए किस तरह का संगीत सुनते हैं?
1: संगीत से मैं पुराने फिल्म के गाने पसंद करता हूँ और मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन करने का मेरा शौक है।
0: अच्छा,
1: मैंने अपने घर पे ही एक आर्काइव बना रखा है। पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्ड को स्टे करता हूँ और उनको डिजिटलाइज करता हूँ और सारा उनका कंप्यूटराइजेशन, उनके ऊपर काफी रिकॉर्डिंग को मैं शोध कार्य भी कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात
1: भारतीय
0: है।
1: जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड थे पुराने, जो नॉन फिल्मी फिल्में, उन सब के ऊपर मेरा फोकस रहता है। मैं उनके संबंधित डाटा इकट्ठे करता हूँ। इस तरह का शौक मुझे बचपन से था। मुझे कम से कम 40 साल से मैं ये रिकॉर्ड कलेक्शन कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, तो आपके पास कितने सारे रिकॉर्ड्स हैं फिर, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, जिन्हें अब हम देखना ही भूल गए हैं?
1: हाँ जी, मेरे पास काफी बड़ा कलेक्शन है।
0: तो घर में आपके पास वो ग्रामोफोन वाली मशीनें भी हैं जिन पर रखकर सुना
1: हाँ
0: जा सकता
1: बिल्कुल,
0: है निडिल
1: सारा
0: लगा के?
1: म्यूजिक सिस्टम है, सारा वो रिकॉर्डिंग सिस्टम है, मैं उनको रिकॉर्डिंग करता हूँ सारा।
0: क्या
1: डिजिटाइजेशन
0: बात है, चलिए
1: का काम चल रहा है सारा।
0: बहुत
1: हाँ
0: अच्छा
1: जी,
0: लगा ऐसे संगीत प्रेमी से बात करना। कौन सा गाना सुनेंगे आप गिरधारी जी आप?
1: फिल्म शोकिया 1951 की है। कमाल सेन का म्यूजिक है, लता मंगेशकर जी की आवाज है। सपना बन साजन आए।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लग गई है उनसे हमारा हमेशा की तरह करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल नहीं करें ताकि अन्य श्रोताओं को इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से, और इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 0222867 0288, दूसरा नंबर 0224002462। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ, रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद आप ले रहे थे। ये आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

समय हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार शाम के 5 बज चुके हैं। आज की पहली सभा को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं श्रोताओं। अब से 1 घंटे बाद यानी कि 6 बजे आपसे फिर से हम भेंट करेंगे दूसरी सभा को लेकर। तब तक के लिए हमें अनुमति दे। नमस्कार।

नमस्कार, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलाइन केंद्र है। हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस समय शाम के 6:23 हुए हैं। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत तथा अभिनंदन करते हुए आरंभ करते हैं आज की दूसरी सभा।

दोस्तों, सभा के कार्यक्रमों को आरंभ करने से पहले आइए जान लेते हैं इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। 6:05 से आप सुन पाएंगे मार कार्यक्रम, जिसमें आज एल्दाद गुरलेनखुम रियांगस्ते

और उनके साथियों की आवाजों में सुन पाएंगे आधुनिक गीत। 6:25 से जेमे कार्यक्रम में आज सुन पाएंगे लोकगीत किहुंग बुले न्यू में रिया में और उनके साथियों के आवाजों में। शाम 6:45 पर आकाशवाणी के एक बहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे हंधियार आंसुरिक बातुरी। प्रशांत हकजर और उनके साथियों के आवाजों में आधुनिक गीत सुन पाएंगे डिमासा कार्यक्रम के तहत शाम 7:00 से

7:20 पर कार्बी कार्यक्रम के तहत लोकगीत सुन पाएंगे मधुराम तेरन और उनके साथियों की आवाजों में। लिंगनेतिंग हावलाई और उनके साथियों की आवाजों में भक्ति गीत सुन पाएंगे कुकी कार्यक्रम में शाम 7:40 से। किसान दोस्तों के लिए किसानवाणी कार्यक्रम सुन पाएंगे रात 8 बजे से। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे कुछ हिंदी फिल्मी गीत।

रात 8:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार संध्या। गजलों का कार्यक्रम होगा रात 9 बजे से, जिसमें आज आप सुन पाएंगे कुछ गजलें नयारा नूर की आवाज में। और सभा के अंत में यानी कि रात 9:30 से आप सुन पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। तो श्रोताओं, ये थे इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी।

दोस्तों अब समय हो गया है मार कार्यक्रम का। आज इस कार्यक्रम में एल्दा गुरलेन खुम रियांगसते और उनके साथियों की आवाज़ों में सुनते हैं आधुनिक गीत।

एल्दा गुरलियन खुमरियांगस्ते और उनके साथियों के गाए इस आधुनिक गीत के साथ ही आज का मार कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं जिमे कार्यक्रम, सुनते हैं लोकगीत किहुम बोइले रियामे और उनके साथियों के आवाजों में।

0: आप सुन रहे थे किहुंग बुइले रियामे और उनके साथियों के गाए कुछ लोकगीत। इस गीत के साथ ही आज का जेमी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलाइन केंद्र है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से रिले किए जाएंगे हंधियार आंचलिक बातोरी।
1: মার্কশ্বিট ফটোশ্বপ কৰি দেউতাকক দেখুৱাইছিল কালি মই বিজুলী বিলৰ পৰিমাণটো শূন্য দেখিবলৈ পালোঁ ভাবিলোঁ নিশ্চয় আকৌ ফটোশ্বপ কৰিছে নহলে বিজুলী বিল শূন্য হোৱাটো কেনেকৈ সম্ভৱ সোধাত সি ক'লে
2: ককাইদেউ এই সকলো ওপৰৱালাৰ দয়া চলাৰ পেনেল আছে নহয়
1: মই ক'লো অ' এইটো ঠিক আছে দেই পি এম সূৰ্যঘৰ মুক্তি বিজুলী যোজনা যোগদান কৰিবলৈ পঞ্জীয়ন কৰক PM সূৰ্যঘৰ .gov.in

प्रशांत हगजर और उनके साथियों के आवाज़ों में आप सुन रहे थे कुछ आधुनिक गीत। श्रोताओ, इस गीत के साथ ही आज का डिमासा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब आरंभ करते हैं कार्बी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में मधुरम तेरन और उनके साथियों के आवाज़ों में सुनते हैं लोकगीत।

मधुराम तेरन अरुण के साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे कुछ लोकगीत। श्रोताओं, इस लोकगीत के साथ ही आज का कार्बी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। अब प्रस्तुत है कुकी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में लिंगनैतिंग हावलाई और उनके साथियों की आवाजों में सुनते हैं भक्ति गीत।

लिंगनैतिंग हावलाई और उनके साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का कुकी कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का हफलंग केंद्र है। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है किसानवाणी कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का हाफ लाइन केंद्र है। अब आरंभ करते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं सुरेश वाडकर और भूपिंदर सिंह के गाए एक खूबसूरत गीत से, जिसे हमने मासूम फिल्म से लिया है।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलाइन केंद्र है। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे समाचार संध्या।
1: आप परेशानियों से

0: विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। अब समाचार विस्तार से। संसद का मॉनसून सत्र आज संपन्न हो गया। पिछले महीने की 20 तारीख से शुरू हुए सत्र के दौरान 12 विधेयक पारित किए गए। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में केवल 19% और राज्यसभा में 39% से अधिक कामकाज हुआ। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मॉनसून सत्र के दौरान विधायी और राष्ट्रीय महत्व के कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए गए। इनमें सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026, कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक और केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 शामिल है। संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान को अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाना है। हालांकि सत्र के दौरान नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के विरोध, प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित अनियमितताओं के मुद्दे पर बार बार हंगामा

0: हुआ। सरकार की ओर से छात्रों के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार होने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद विपक्ष का विरोध जारी रहा, जिसके कारण सदन की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है। नई दिल्ली में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आरोप लगाया कि सरकार संसद में चर्चा के लिए तैयार थी, लेकिन विपक्ष ने चर्चा नहीं होने दी।
2: टोटल 12 बिल्स पास किए हैं और चर्चा के दृष्टि से हम खुश नहीं है, क्योंकि ऑपोजिशन ने ठीक से चर्चा करने नहीं दिया, विशेष करके लोकसभा में, क्योंकि बिजनेस अच्छा हुआ है। अभी लगभग 3 दशक का मेरा एक्सपीरियंस होने वाले हैं, तो पहली बार ये दृश्य देखने को मिला कि सरकार खुद कह रहे हैं कि हम डिस्कशन चाहते हैं और ऑपोजिशन बहाना बना करके डिस्कशन से भाग रहे हैं, तो ये लोकतंत्र के लिए, विशेष करके संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
1: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सांसदों ने झारखंड भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में संसद के मकर द्वार पर आज प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि झारखंड में लगभग 600 प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।
3: झारखंड के 600 बच्चों पर एफआईआर हुआ है। ऐसे बच्चे जो न्याय मांगने गए थे, जिनकी नौकरी बेची दी गई, ऐसे 1000 के ऊपर नौकरी बेची गई, लगभग 400 करोड़ रुपए घोटाला है। और जब बच्चे न्याय मांगने गए कहाँ जाएंगे? 20 दिनों से लगातार आंदोलित हैं। क्या ये एफआईआर जायज है? लहू सड़कों पर बहा बच्चों का, आपकी जवान नहीं खुली, क्या हम बोलते हो? आपका दोहरा चरित्र इसीलिए देश जानता है।
1: भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विपक्षी दल झारखंड और पंजाब के छात्रों की समस्याओं से जुड़े सवालों से बचने के लिए संसद में हंगामा कर रहे हैं।
4: भारत की संसद, जो संवैधानिक दृष्टि से चर्चा और संवाद का सबसे बड़ा स्थल है, वहाँ निरंतर बवाल मचाकर रखा गया है। अर्थात पंजाब विधानसभा में झूठ, भारत की संसद में बवाल और न्यायालय के द्वारा उठते सवाल, ये तीनों ये साफ दर्शाते हैं कि छात्र हितों के सभी अलंबरदार संवैधानिकता के धरातल पर दम तोड़ दिया है।
1: संसद ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। विधेयक का उद्देश्य देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और साधन संपन्न बनाना है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि संसद में आज पारित खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक किसी भी राज्य के अधिकारों को नहीं छीनेगा और न ही राज्य के राजस्व ढांचे पर कोई असर पड़ेगा। नई दिल्ली में श्री रेड्डी ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य प्रमुख खनिजों का उत्पादन बढ़ाना है।
5: एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी भी भारत सरकार बढ़ा रही है, क्लियरेंसेस एंड अप्रूवल से स्पीड अप करा रहे, ताकि इन्वेस्टमेंट्स बढ़े, रोजगार मिले लोगों को, देश को एक मिनरल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। उसके साथ साथ भारत सरकार का जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम है, उसके लिए प्रयास कर रही है। आज नरेंद्र मोदी सरकार जो रिफॉर्म्स लाए हैं, होल ऑफ मिनरल रेवेन्यू जनरेशन में 65% था 2014-15, आज 85% शेयर बढ़ाया, वैसे ही लगभग 23% स्टेट्स का रेवेन्यू बढ़ाया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश के माल और सेवाओं सहित निर्यात में इस वर्ष जुलाई में 13.3% की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई और ये 80 अरब 14 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। पिछले वर्ष इसी माह में देश का निर्यात 70 अरब 72 करोड़ डॉलर था। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस दौरान माल निर्यात करीब 20% बढ़कर 44 अरब डॉलर से अधिक हो गया। सेवा निर्यात पिछले माह के दौरान 35 अरब 89 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट।
6: भारत से अमेरिका, चीन, सिंगापुर, केन्या और मलेशिया को जुलाई महीने में होने वाले निर्यात में बढ़ोतरी देखी गई। इस दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इटली और वियतनाम को होने वाले निर्यात में भी सुधार हुआ है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद जुलाई में पश्चिम एशिया के देशों में होने वाला भारत का निर्यात सालाना आधार पर 8.62% बढ़कर 570 करोड़ डॉलर हो गया। पिछले साल इसी महीने में यह 120 करोड़ डॉलर था। अमेरिका को होने वाला निर्यात 12.85% बढ़कर लगभग 900 करोड़ डॉलर और चीन को होने वाला निर्यात 64.57% की भारी बढ़त के साथ 220 करोड़ डॉलर हो गया। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: भारत को चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता करने के लिए चीन और रूस ने समर्थन दिया है। भारत में चीन के राजदूत शू फेई होंग और रूस के प्रभारी राजदूत रोमन बाबुश्किन ने आज नई दिल्ली में यह जानकारी दी। राजदूत शू ने कहा कि चीन भारत और अन्य ब्रिक्स सदस्यों

0: कलाओं, संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक और जनजातीय कलाओं, कठपुतली नृत्य, पारंपरिक रंगमंच और अन्य संबंधित कला रूपों में योगदान के लिए दिए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में आधुनिक भारत की प्रतिभा और समर्पण झलकता है।
1: जो कलाकार आज सम्मानित हुए हैं, वे मिलकर भारत का एक सांस्कृतिक मानचित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा मानचित्र जिसमें इस देश की मिट्टी से उपजे कथाएं और गीत जुड़े हैं, विविधता से भरी इस धरती के नृत्य और उत्सव समाया हुआ है। इसके भाषा बोलियों की सदियों से बनती आ रही संस्कृतियों की वही बसी हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा। इसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय चैनलों पर रात 9:30 बजे संबोधन के क्षेत्रीय भाषा संस्करण का प्रसारण करेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले आज नई दिल्ली के लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस रिहर्सल ने समारोह के औपचारिक वैभव, सटीकता और देशभक्ति की भावना को प्रदर्शित किया। इस वर्ष का समारोह वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा और इसकी मुख्य थीम विकसित भारत एट 2047 के लिए युवा शक्ति है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर आज हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृह मंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देशभर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र में मुंबई के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों के लगभग 1,500 कैडेट ने आज शहर के फोर्ट क्षेत्र में मार्च निकाला। भोपाल में 350 से ज्यादा नावों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। पंजाब और चंडीगढ़ में तिरंगा यात्राएं बड़े उत्साह के साथ निकाली गईं। मणिपुर में आज देशभक्त दिवस मनाया गया। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज राजधानी में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में दिव्यांगजनों के साथ एक विशेष संवाद का आयोजन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उनके अनुभवों को सुना और उपलब्धियों की सराहना की। इस विशेष सभा में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और वर्गों से जुड़े दिव्यांगजन शामिल हुए। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने इस महीने की 16 तारीख तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और उत्तर प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, विदर्भ, केरल और माहे में गरज के साथ बारिश की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी गरज के साथ बारिश का अनुमान है। वहीं आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हुई। ईशानी के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है।
3: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार बारिश ने कई उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को और गंभीर बना दिया है। सिमलीपाल के ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में बूढ़ा बलंग नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे मयूरभंज में घर डूब गए हैं और कई गांव तथा बारीपदा शहर के कुछ हिस्से अलग थलग पड़ गए हैं। केंदुझर में पटना और अनंतपुर के पास बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मयूरभंज के कुछ हिस्सों में सड़कें डूब गई है और एक पुल बह गया है। अगले 24 घंटे के दौरान इस डिप्रेशन के उत्तर पश्चिम की ओर गंगा के मैदान इलाकों वाले पश्चिम बंगाल और झारखंड से होकर गुजरने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल की हालत स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। श्री बादल और उनकी पत्नी हरसिमरत कौर नांदेड़ के मुगत स्थित गुरुद्वारा माता

0: साहिब देवान जी से वापसी के दौरान हाथ में चोट लगने के बाद उनका महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गईं तो वे और भी बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। प्रदर्शनकारियों द्वारा 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना के मद्देनजर रांची प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। नाइजीरिया के लागोस में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने ओवरऑल चैंपियन का खिताब जीता है। प्रतियोगिता में भारत ने 13 स्वर्ण, 8 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 35 पदक जीते। प्रतियोगिता के चौथे दिन भारतीय तलवारबाजों ने 6 स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद का मॉनसून सत्र संपन्न, 12 विधेयक पारित, सरकार ने सत्र के दौरान बहस नहीं होने के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया। जुलाई में भारत के कुल निर्यात में 13% से अधिक की मजबूत बढ़ोतरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक रिपोर्ट ने पिछले वर्ष दिल्ली के लाल किला विस्फोट के लिए अलकायदा को जिम्मेदार ठहराया। छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश की आशंका। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत 13 स्वर्ण सहित 35 पदकों के साथ ओवरऑल चैंपियन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए समाचार संध्या अभी आप सुन रहे थे। सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के हाफलंग केंद्र में पुनः एक बार हम स्वागत करते हैं।
2: हेलो हाफलंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलंग, हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं। और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर। नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलॉन्ग।
1: श्रोताओं, अब आरंभ करते हैं गजलों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज सुनते हैं कुछ गजलें नयारा नूर के आवाज में।

सुनो के सरफ़लम यज़ल के हमी तुम्ही बंदगान बेबस अलीम भी हैं खबीर भी हैं। सुनो कि हम बेजुबान बेकस बशीर भी हैं नज़ीर भी हैं। और हर एक कुलुल अम्र को सदा दो कि अपनी पगदे अमल संभाले, उठेगा जब जम में सर फरोशां पड़ेंगे दारो रसन के लाले, कोई ना होगा कि जो बचा ले, जजा सजा सब यहीं पे होगी, यहीं अजाब व सवाब होगा, यहीं से उठेगा शोर महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।

0: नयारा नूर के आवाज़ में आप सुन रहे थे चंद गज़लें। दोस्तों, इन गज़लों के साथ ही गज़लों का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है।
1: आपके गीत दोस्तों FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
0: श्रोताओ, हम आकाशवाणी के हफलंग केंद्र से बोल रहे हैं।
2: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
3: आ गए सैलरी?
4: हाँ।
3: नए झुमके?
4: ना, पहले बचत,
3: पहले झुमके।
4: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या?
4: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: अब आरंभ करते हैं हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम चित्रगीत। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं सुरेश वादकर और अनुपमा देशपांडे के गाए एक बेहद खूबसूरत गीत से। फिल्म का नाम है चांदनी।

तो श्रोताओं, ये था आज का चित्रगीत कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलैंग केंद्र है। हमारे स्टूडियो के घड़ी में इस समय रात के 10 बज चुके हैं। समय हो गया है आज की दूसरी सभा को समाप्त करने का। कल पहली सभा के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी संयुक्ता को दीजिए इजाजत। शुभरात्रि। जय हिंद।